आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। रिश्तों के रंग बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई, अपनापन और विश्वास हर दौर में दिलों को जोड़ने का काम करता रहता है।

जब मन में शांति हो तो हर सुबह एक गीत बन जाती है। आज की भोर को प्रेम, सौहार्द और उम्मीदों के सुरों से सजाएं।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे रही हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की, वैशाख मास की 24वीं तिथि। तदनुसार 14 मई 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब आपको जानकारी दे दे कि आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकेंगे। छह बजकर दस मिनट का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। छह बजकर चवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित्र मानस गान। सात बजकर दस मिनट का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात।

8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। सुबह 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा कार्यक्रम घर आंगन का। 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल।

शाम 5:10 का समय रहेगा कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ ढले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले

24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

6:11 और ठीक 58 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। तो सुप्रभात यानी एक नई सुबह की नई शुरुआत, और वो शुरुआत शुभ तब होती है जब हम किसी एक अच्छी बात से शुरुआत करते हैं। जैसे मदर टेरेसा की ये बात कि हम केवल महान कार्य नहीं बल्कि छोटे कार्य को भी महान प्रेम से कर सकते हैं, यानी नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। तो छोटे छोटे कामों को महान तरीके से करना, इसे आध्यात्मिक परंपरा में सेवा माना गया है और कहा गया है सेवा परमो धर्मः, और यही बहुत सारे

महात्माओं ने, गुरुओं ने, संतों ने सिखाया, अपने आचरण से सिखाया। और ये छोटे छोटे कार्य होते क्या है कि आप किसी एक व्यक्ति के दुख को अपना समझकर उसके लिए कुछ करें। देखने में सुनने में छोटा सा लगता है, लेकिन उसके लिए सोचिए कितना बड़ा है। इसीलिए ये जो कार्य होते हैं जो हम सीखते हैं बहुत सारे उन लोगों से जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगा दिया, तो समझ में आता है कि जीवन हमारे अपने दायरे से बाहर भी है। हम जैसा समझते हैं कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, सुबह से शाम तक सिर्फ अपने लिए काम करते रहें, उससे बाहर जो जिंदगी है वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज की शुरुआत कुछ ऐसी ही कि आज हम किसके लिए क्या नया कर सकते हैं जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, सोचिए और साथ ही साथ ये भी सुनिए।

जी हाँ, तो जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं वो सेवा का भाव हमें बहुत संतुष्टि देता है, खुशी देता है, और तब जाके ये प्रभात जिसकी हम बात कर रहे थे कि सुप्रभात, शुभ प्रभात, तो वो प्रभात शुभ हो पाती है। क्योंकि देखिए, पूरे 24 घंटे तो सिर्फ अपने लिए ही हम निकालते हैं, लेकिन उसमें से कुछ समय किसी और के लिए निकालना, यही तो सेवा है। और इसे ही भगवद गीता के 3rd अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अनत्र लोकः अयम कर्म बंधनः तत् अधर्म कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचर। के जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कर्म जो अपने लिए किया जाए वो बंधन बन जाता है, पर वही अगर परोपकार के लिए किया जाए या दूसरों के लिए किया जाए तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। तो अगर अपने जीवन से इसे जोड़ें तो अपने लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने अलावा किसी और के लिए निस्वार्थ होके हम क्या करते हैं, ये सोचने की बात है। और सेवा भी तो एक ऐसा ही एहसास है, और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी महीने में एक आधे बार समय निकाल कर किसी अस्पताल में जाकर वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें कुछ किताबें दे सकते हैं जो वो पढ़ें, और उनका टाइम भी पास हो और उन्हें अच्छा भी लगे। किसी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कुछ चाहिए, बेशक वो स्टेशनरी हो या किताबें हो, तो वो आप जुटाकर दे सकते हैं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर एक दिन का समय देना, ये भी एक अच्छी सेवा है। या कि एक व्यक्ति जो बहुत उदास है उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह देना कि घबराओ मत, मैं हूं ना, तो ये भी एक सेवा ही है। बाकी तो अपने शरीर से अपने लिए जो कुछ करना है वो तो हमारा नित्य कर्म है, वो तो हमें करना ही है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें अपनी जिंदगी से ऊपर उठाती हैं, जिंदगी के मर्म को समझाती हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

समय हो चला है 6:31 और ठीक 4 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है अर्पण। अर्पण जो सुबह की एक खूबसूरत शुरुआत का हिस्सा है और याद दिलाता है कि सुप्रभात जब कहते हैं तो उस सुप्रभात का वास्तविक अर्थ क्या है या कैसे अपनी सुबह को शुभ बनाएं। और उसमें से एक भाव होता है सेवा का भाव, कि सुबह सुबह ही आप ये सोच लें कि आज किसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे, क्या ऐसा करेंगे जो निस्वार्थ होगा, आपसे हटकर होगा, आप जो पूरा दिन अपनी जिंदगी में जी रहे हैं उससे अलग होगा। तो ऐसा ही कोई ना कोई जज्बा, सुबह सुबह जागे तो दिन अच्छा हो ही जाता है, जैसे सेवा का भाव। और सेवा से ना सिर्फ जो करने वाला है वो बदलता है, बल्कि जिसके लिए किया जाता है वो भी बदल जाता है। तो सेवा ही एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा एहसास है, ऐसा अनुभव है जो समाज में सामंजस्य बनाता है, उससे मन में करुणा आती है और तब हम वास्तविक खुशी या आनंद को समझ पाते हैं। सच कहें तो ये एक तपस्या भी है और एक साधना भी, एक ऐसा दीप है जो दूसरों को प्रकाशित करता है लेकिन स्वयं भी खुद भी वैसे ही प्रकाशित हो जाता है। तो सोचिए आज किसके जीवन को प्रकाशित करना है, किसके लिए क्या ऐसा करना है जो उसे उसकी दुविधाओं से बाहर निकाल सके। आप सोचिए और साथ साथ ये भी सुनिए।

बहुत ही सुंदर ये भजन। और एक सुंदर बात जो हम कर रहे थे कि सेवा का भाव क्यों जरूरी है और क्यों वो करके हमें इतनी खुशी मिलती है। जानते हैं, ऐसे तो बहुत सारी लोगों से हमने सुना है, लेकिन अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो उसमें भी सेवा को बहुत अच्छा माना जाता है, प्रधान माना जाता है। क्योंकि सेवा करना सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, उन्हें किसी दुख से उबारना नहीं है, उन्हें कोई सहायता देना नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर के अहंकार को मिटाना भी है। तो जब हम निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी बदले की उम्मीद से किसी के लिए कुछ करते हैं, तो सोचिए कि हम उस ऊपर वाले के बहुत करीब हो जाते हैं। हमारे अंदर से मैं और मेरा का भाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। और सच कहें तो आध्यात्मिक विकास की सबसे पहली शर्त यह है कि मैं और मेरा आपके मन से खत्म हो जाए, और सेवा वही माध्यम है। अगर भगवद गीता की बात करें तो सेवा हमें सिखाती है कि बिना फल की इच्छा के लिए भी काम किए जा सकते हैं। तो जो कर्म योग है वो भी समझ लीजिए सेवा से ही निकला है, या सेवा इसका एक उदाहरण है। इसीलिए जब हम पूरे मन से किसी के लिए कुछ करते हैं तो मन में बहुत सारी अच्छी चीजें आ जाती हैं, मन का शुद्धिकरण होता है, जैसे करुणा आ जाती है, प्रेम आ जाता है, कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। और बस यही सब कुछ तो है जो हमें इंसान बनाता है।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स @20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद

जी हाँ, तो बात हो रही थी कि सुबह सुबह के समय को कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए या पूरा दिन कैसे प्रोडक्टिव हो। लेकिन यकीन मानिए, ये सारी बातें किताबी रह जाती हैं अगर हम सुबह सुबह अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते या हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। तो लगता है कि ठीक है, सुनने में अच्छा है, लेकिन कैसे उठें, हिम्मत ही नहीं हो रही, एनर्जी ही नहीं है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी किया जाए। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो स्थिति है, ये तब आती है जब बहुत टाइम तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ज़रूरी ये है कि हर रोज़ 10 मिनट ही निकालें, लेकिन निकालें तो कुछ तो ऐसा करें जो आपके तन और मन को एक साथ संतुलित रखे, बैलेंस्ड रखे। अब उसमें आसन की जब हम बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है, पता भी नहीं चलता और आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। जैसे वज्रासन की बात करें तो वज्रासन जो है वो एक ऐसा आसन है जो हमारे पाचन में मदद करता है, घुटनों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है, यानी हमारा फोकस भी बढ़ाता है। तो उनके लिए ज़्यादा ही लाभकारी है जो काम के दौरान लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जैसे कि आप। तो करना कैसे है? आपको घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाना है, हाथों को घुटनों पर रखना है और अपनी जो स्पाइन है, रीढ़ है, उसको सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है। आप अगर 5 मिनट भी ऐसे बैठ जाएं तो भी बहुत कुछ बदल जाएगा। बस शुरुआत करने की बात है, इस आलस को छोड़ने की बात है और ये समझने की बात है कि अपना ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है आपकी और उसके बाद ही सब कुछ आता है। इसीलिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए।

जी हाँ, इतना प्यारा सा गाना आपको सुनाया है, लेकिन एक बात के लिए तो सॉरी बोलना पड़ेगा कि आपको योग के बारे में बताते बताते हेल्थ टिप तो बताना ही भूल गई थी। अब वो ज़रूरी है ताकि आप योग भी ढंग से कर सकें, और वो है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, उठते ही सबसे पहले एक ग्लास गुनगुना पानी पीजिए, उसमें थोड़े से नींबू की बूंदें हों तो और अच्छा है। और ऐसा करेंगे तो शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ता है और दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहती है। और हाँ, ये तो हुई आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में यानी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन मानसिक सेहत भी तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मोबाइल से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है, थोड़ी देर अपने आप को देना बहुत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी थोड़ी देर बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, अपने आप सोचिए कि आज क्या क्या करना है या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे खुशी देती हैं, जिनको करके मुझे अच्छा लगता है। बस ऐसा सोचने से ही आपके दिमाग में अपने आप आएगा और आप उन चीज़ों का अवॉइड करने लगेंगे जो आपको परेशान करती हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ भी आपके अपने हाथ में है, पर ये भी हम जानते हुए भी कई बार सोचते नहीं हैं या इसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। तो आज ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इसके बारे में भी छोटा सा कुछ शुरुआत में किया जाए।

तो इसी प्यारे गाने के साथ पूनम आपसे इजाजत चाहती है। आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात, और अब सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। पूरे आधे घंटे हम आपके साथ रहेंगे और देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज के संक में महानगरों की खबरें होंगी और मौसम का हाल जानेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। लेकिन सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार सुभद्रा को।
1: नमस्कार एंड हेलो फहद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल यू लवली पीपल ट्यून इन टू अस दिस मॉर्निंग। सो टाइम फॉर आज सवेरे, आवर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस एंड एंजॉय द प्रोग्राम। सो वी बिगिन फहद विद सम न्यूज।
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन होगा, और इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी।
1: The Assam government will introduce a uniform civil code UCC bill in the state assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill.
0: और सुभद्रा, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन पाबंदियों के कारण किसानों, खासकर आलू उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से ये प्रतिबंध हटाने का वायदा किया था, और इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निकाय भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से जुड़े मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का

0: फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार ने उन सभी लोगों की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं जिन्हें तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने कई आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
1: The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Directorate General of Foreign Trade, DGFT, has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to the EU and USA under CXL and TRQ quota, the Advance Authorization Scheme AAS, and government-to-government shipments to meet food security needs of other countries. Consignments already in the physical export pipeline are also exempted. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West and Ministry of External Affairs CB George informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Energy security will dominate the agenda, with India looking to secure stable supplies amid rising geopolitical tensions in West Asia and continued pressure on global oil markets. We have more from our correspondent.
2: India and the UAE share one of the most significant energy partnerships in the region. The UAE is currently the fourth largest source of crude oil for India, meeting nearly 11% of country's total requirement. On liquefied natural gas, Indian companies have locked in long-term supply deals with Abu Dhabi's ADNOC Gas for a cumulative 4.5 million tons per year. Now let's hear from Asim Mahajan, Additional Secretary, Gulf.
3: We share a very vibrant partnership in the area of energy. The UAE is an important partner in our energy security. Last year, the UAE was the fourth largest source of crude oil, meeting nearly 11% of our requirement. In the area of LNG, Indian companies and the UAE Abu Dhabi National Oil Company ADNOC Gas have entered into long-term supply contracts for cumulative of 4.5 MMTPA LNG to India.
2: The linking of India's UPI payments platform with UAE's ERNI system has already transformed cross-border transactions for businesses and Indian diaspora. The UAE remains India's third largest trading partner and the seventh largest cumulative source of foreign investment over the past 25 years. As West Asia navigates one of its most turbulent periods in recent memory, Friday's meeting in Abu Dhabi is being seen as an important anchor of stability and long-term strategic intent for both nations. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: और सुभद्रा, कल उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ हुई बारिश से 43 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी के पास।
4: आंधी तूफान से हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और सुभद्रा, ये मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर की नमी की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में पड़ा है।
1: गवर्नमेंट हैज गिवन वन ईयर एक्सटेंशन टू डायरेक्टर of Central Bureau of Investigation, Praveen Sood, according to an official order issued by the Department of Personnel and Training. The Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond 24th of this month.
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिन की शिखर वार्ता के लिए चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंच गए हैं। उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ईरान युद्ध, वैश्विक ऊर्जा संकट, व्यापार तनाव, ताइवान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक को वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वार्ता में अमरीका और चीन के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने, चीन द्वारा अमरीकी उत्पादों की खरीद बढ़ाने और होर्मोज़ जलडमरू मध्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
1: IPL क्रिकेट, विराट कोहली क्रिएटेड हिस्ट्री एंड ब्रोक सेवरल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6-wicket विक्ट्री ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स इन रायपुर लास्ट नाइट। कोहली स्कोर्ड एन अनबीटन 105 रन्स ऑफ 60 बॉल्स इंक्लूडिंग 11 फोर्स एंड 3 सिक्सेस। इट वाज हिज 9th IPL सेंचुरी, द मोस्ट बाय एनी प्लेयर इन द टूर्नामेंट्स हिस्ट्री। ड्यूरिंग हिज इनिंग्स ही ऑल्सो कंप्लीटेड 14,000 T20 रन्स, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एंड द फास्टेस्ट प्लेयर एवर टू रीच द माइलस्टोन, ब्रेकिंग क्रिस गेल record. He also crossed 400 runs this IPL season. Royal Challengers Bengaluru defeated Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur last night. And today, Punjab Kings will face Mumbai Indians in Dharamshala at 7:30 p.m.
0: श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का। सुभद्रा से जानेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें।
1: यस फरहत, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट विजय नारायण एंड इट्स एडवोकेट जनरल एज इट्स एडवोकेट जनरल। ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्टेट गवर्नमेंट इन मद्रास हाई कोर्ट। ही इज द सक्सेसर ऑफ P.S. रामन, हु रिजाइंड ऑन ट्यूजडे। नारायण हैज सर्वड एज एडवोकेट जनरल ड्यूरिंग the AIADMK rule from 2017 to 2021. The Aringar Anna Zoological Park in Vandalur has received a pair of Asiatic lions from Indore Zoo under an animal exchange program designed to strengthen conservation breeding and diversify the genetic pool of the endangered species in captivity. The lion sourced from two distinct gene pools will be integrated into the zoo's lion safari after they finish a 4-week quarantine under vet supervision. Deputy Director Manish Meena said that genetic distinction between the two animals was central to the acquisition. He also said that after quarantine, the lions will be housed in adjoining enclosures to build compatibility before being introduced into the safari area. Going to Bengaluru now, Chief Minister Siddaramaiah will lay the foundation stone for a new international cricket stadium at Anekal near Bengaluru on May 23rd. The proposed stadium, with a seating capacity of 80,000, is expected to become the second largest cricket stadium in India after the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The rupees 943 crore project will be developed on 75 acres of Karnataka Housing Board land at Suryanagar in Anekal and is expected to be completed within 3 years. The project forms part of a larger sports complex approved by the state government last year. Karnataka will celebrate the 12th International Day of Yoga on June 21, 2026 under the theme Yoga for Health, Knowledge and Global Peace. In line with the Ministry of Ayush guidelines, the state government is organizing a large-scale program across Karnataka to promote yoga and holistic well-being. The main state-level event will be held at Vidhan Sautha, Bengaluru, with around 5,000 participants expected to take part in the mass yoga demonstration based on the common yoga protocol. The program is expected to be attended by the Honorable Governor, Chief Minister, Ministers, legislators, officials and yoga gurus. Taking you to Hyderabad now, Chief Minister Revanth Reddy has announced major development plans for Telangana's urban areas. In a meeting yesterday, he discussed creating growth corridors that will connect important cities across the state. The government will develop 3 main corridors. The first connects Warangal, Karim Nagar and Khammam. The second links Mehboob Nagar, Bhootpur and Jadcherela. The third connects Kotagurem, Palvancha and Sujata Nagar. These corridors will improve transportation and boost economic growth. The Chief Minister emphasized that cities must plan for the next 25 years. Every municipality will get outer ring roads and modern infrastructure. The plans include solid waste management systems and water treatment plants. And Farhat, over to you now for rest of the news.
0: Ji, Delhi, Mumbai, Kolkata ka rukh kar lete hain. Sabse pehle baat Rajdhani Delhi se judi khabar ki. Kendriya Madhyamik Shiksha Board CBSE ne kal kaksha 12vi ki board pariksha ke parinam bhi ghoshit kar diye hain. Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta ne CBSE kaksha 12 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सहित पूरे देश के विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहा है कि उन्होंने जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ाने, सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर देता है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी कक्षा 12वीं की परीक्षा में

0: सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। दिल्ली में मॉनसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के बड़े ड्रेनों से 76% गाद निकाला जा चुका है। आधुनिक मशीनें, लगातार निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए नालों की सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 29 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लक्ष्य में से अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच कल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संस्थागत समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने समन्वित और पीड़ित केंद्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ कल नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगो का अनावरण किया। इस लोगो में त्रिशूल दर्शाया गया है जो नासिक के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रतीक है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। इस अवसर पर श्री फडणवीस ने कहा कि ये लोगो की भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। वहीं महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिबड़ेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नतीजे देख सकेंगे। इस वर्ष पहली बार सेमेस्टर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू की गई थी। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 15,000 से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अंतिम परिणाम तीसरे और चौथे सेमेस्टर में प्राप्त अंकों को मिलाकर तैयार किया जाएगा। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं सुभद्रा। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज सुबह से ही हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने भी आज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अगर कोलकाता की बात की जाए तो वहां पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान में बदलाव आएगा और ये 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। बेंगलुरु इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट of thunder lightning. The temperature will hover between a minimum of 28 degrees and a maximum of 41 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज है 14 मई 2026।
1: 1607, the first permanent English settlement in North America, Jamestown, Virginia was established. 1787, delegates gather in Philadelphia to draw up the US Constitution.
0: और 1796 में आज ही के दिन चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला सफल टीकाकरण किया जिससे आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान की नींव पड़ी।
1: फर्स्ट एडिशन ऑफ लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज वाज पब्लिश्ड दिस डे इन 1842।
0: 14 मई 1878 को वेस्लिन का ट्रेडमार्क पहली बार आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत किया गया।
1: And 1900, the Olympic Games opened in Paris, held as part of the 1900 World's Fair.
0: 1948 में इसराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और डेविड बेन गुरियन को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं 14 मई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बना। 1954 में आज ही के दिन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जी वी मावलंकर ने यह ऐतिहासिक घोषणा की थी कि हाउस ऑफ द पीपल को अब लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा संविधान के प्रति निष्ठा, जनता की आकांक्षाओं और राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों की सजीव संस्था है।
1: Air India inaugurated its first scheduled service from Bombay to New York on May 14, 1960, utilizing a Boeing 707-420 named Gauri Shankar. This marked the first time an Asian airline operated a

श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मृणाल सेन की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली, उड़िया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते रहे। मृणाल सेन ने फिल्मों में निर्देशन की शुरुआत की थी 1956 में बंगाली फिल्म रात भोरे से। वहीं 1958 में उनकी दूसरी सफल फिल्म आई नील आकाशेर, और इस महत्वाकांक्षी फिल्म में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चीनियों के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष से की थी। तो आइए इसी फिल्म से ये प्यारा संगीत सुन लेते हैं।

1959 की ये बंगला फिल्म जिसने मृणाल सेन को पहचान दिलाई थी और महादेवी वर्मा की कहानी पर ये आधारित फिल्म थी। 1960 की उनकी फिल्म बाईशे श्रावण जो कि 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल पर आधारित थी और आकाश कुसुम ने एक महानिर्देशक के रूप में मृणाल सेन की छवि को विस्तार दिया। मृणाल की अन्य सफल बंगाली फिल्में रही इंटरव्यू, कलकत्ता 1972 और पदातिक 1973 में आई, जिन्हें कलकत्ता ट्रायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। तो आइए सुन लेते हैं भुवन शोम के ये प्यारा सा गीत।

0: इसमें भुवन शोम की भूमिका निभाई थी उत्पल दत्त ने। और ये एक सख्त बूढ़ा अकेला रेलवे अफसर होता है जो रिश्वतखोरों से नफरत करता है, नियम का पक्का होता है। और उसकी मुलाकात होती है गौरी से, जो बहुत ही सादगी के साथ रहती है, और उसके बाद दिन की कहानी शुरू हो जाती है।
1: And you know, friends, we just talked about Frank Sinatra a little while ago. So, crooner to another crooner now, guitar virtuoso, blues really king, or B.B. King, went away this day in the year 2015. King of the blues, B.B. King began as a disc jockey in Memphis before finding fame.

0: Hollywood film director producer George Lucas celebrates his birthday today, and we all know his best known film, the two Star Wars trilogies, the four Indiana Jones movies, and American Graffiti. He started producing films as a student at the University of Southern California and was awarded a scholarship by Warner Brothers in 1967. Since then, his own production company, Lucasfilm, owns Industrial Light and Magic and Pixar Animation Studios. And also 1984 Facebook man Mark Zuckerberg was born this day in White Plains, New York. This American computer programmer founded Facebook, a social networking website, in 2004, co-founded rather. Zuckerberg took the company public in May 2012, and with, of course, majority shares, he became the world's youngest self-made billionaire in 2008 at age 23.
1: और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक जगदीश चंद्र माथुर ने, जिन्होंने आकाशवाणी में भी काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को रेडियो में वो लेकर आए। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ इन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने कई सारे रेडियो नाटक भी लिखे, जिसमें ओ मेरे सपने, बंदी, धरती का सवाल, अंधेरे के बाद शामिल हैं। इसके अलावा उनके कई सारे निबंध संग्रह आए, नाटक और रंगमंच, आधुनिक हिंदी नाटक। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची। कोणार्क 1951 माथुर जी की पहचान बनी। रीढ़ की हड्डी 1947 में प्रकाशित हुई। 20 पन्ने का ये एकांकी पर पूरा समाज दिखाई दिया। और इसके अलावा 1969 में पहला राजा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया।
0: एंड फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न एक्ट्रेस केट ब्लैनशेट सेलिब्रेट्स अ बर्थडे टुडे, एंड अनदर हॉलीवुड ग्रेट रीटा हेवर्थ पास्ड अवे दिस डे। रीटा अचीव्ड फेम ड्यूरिंग द 1940s, अपीयरिंग इन 61 फिल्म्स ओवर 37 ईयर्स। द प्रेस कॉइन्ड द टर्म द लव गॉडेस टू डिस्क्राइब हेवर्थ आफ्टर शी हैड बिकम द मोस्ट ग्लैमरस स्क्रीन आइडल ऑफ द 1940s। एंड जे बेकेनस्टीन, सैक्सोफोन प्लेयर, को फाउंडर ऑफ स्मूथ जैज आउटफिट स्पाइरो जायरा, टर्न्स 75 ईयर्स ऑफ एज टुडे। ग्रू अप इन अ musical family. His mother was an opera singer, father a jazz buff. Jay grew up listening to music of Louis Armstrong, Charlie Parker, Sonny Rollins, etc. Along with Spyro Gyra, Bekenstein also plays for other musicians. A guest with Dream Theater, here's a snatch of his solo, another

0: और श्रोताओं, आज जन्मदिन है प्रशंसित भारतीय फिल्म टेलीविजन और थिएटर अभिनेता सचिन खेड़कर का, जो हिंदी, मराठी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और मजबूत स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने फिल्म तेरे नाम देखी होगी तो सलमान खान के बड़े भाई के रूप में वो नजर आए थे, तो उसी फिल्म से ये डायलॉग सुन लेते हैं।
1: मैंने सुना है कल बड़ा हंगामा हो गया, खूब मार पिटाई की कॉलेज में।
2: मार पिटाई नहीं भैया, मैंने उनकी टांगे तोड़ दी। अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचा ना तो एलेक्स के लोग कनक को मार दिए होते।
1: अरे तुम्हें जरूरत क्या है किसी और के फटे में टांग डालने की? हाँ,
2: कमाल कर रहे हैं, मेरा दोस्त है, अगर कोई आपको मारने आता तो क्या मैं चुप बैठता? और फिर कॉलेज भी तो मेरा ही है।
1: है नहीं था, कितने साल हो गए कॉलेज पास किए हुए तुम्हें, फिर भी वहां बैठा रहता है, प्लेटफॉर्म पर टंगा रहता है बिना वजह। अरे कुछ काम वाम करना है या यूं ही आवारगी में उम्र गुजारनी है?
3: बस एंड फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक बेस प्लेयर, लीड वोकलिस्ट, द रॉक आइकॉन ऑफ क्रीम सुपर ग्रुप

0: कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा, क्योंकि समय हो चुका है 7:59 और 33 सेकंड। तो सुभद्रा और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू प्याज सब्जियां फल खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र

0: सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार आधार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को

0: ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Pongketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
4: Assam cabinet so passed uniform civil code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam.

0: linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leave 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारिजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स एट द रेट 20 इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में इसलाहात के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक़िद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाज़े किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्तिताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक

0: बंदी आयत करती है जिसमें खाम चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमरीका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिजा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात खपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को खत्म कर दिया है जिनका सबुकदोशी के बाद TMC हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने जरई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। जरई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। जिला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि जरई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर जरूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से जरई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दतकार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अबू जहबी का दौरा करेंगे जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वजीर आजम का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तावुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहद अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहदा अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल जरूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमू मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहदा अरब अमारात गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का 7वां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबू धाबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ

0: होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर जरूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद जिलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिलीं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज़ालाबारी से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय महकमाए मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ 2 रोजा मुजाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुजाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूद एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी 6 सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है। CBSE की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 154

0: वाली इस मेम्बरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की। इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफे पर शाया किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाया की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म।

8:45 और ठीक 55 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और यह है म्यूजिकल दिल लगी। और म्यूजिकल दिल लगी आप सुनते हैं रास्ते में जाते हुए, कि आप ऑफिस पहुंचने की जल्दी में हैं या फिर घर में हैं, तो इत्मीनान से सबको भेज चुके हैं। लेकिन इन सब में जैसे म्यूजिकल दिल लगी का नाम आता है ना, तो ये जो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल जाती है ना, इसकी तो कोई बिसात ही नहीं है, इसका तो कोई पैरेलल है ही नहीं। और वैसे सच कहें तो ये जो मुस्कुराहट है ना, ये किसी का भी दिन बना देती है, चाहे परिवार हो, पड़ोसी हो या ऑफिस का गार्ड ही क्यों ना हो। कि आप जब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, लिफ्ट में जा रहे हैं, तो भी आपने एक मुस्कुरा के देख लिया उनको, तो सोचिए कि उनका भी दिन बन गया। इतनी छोटी सी चीज़ लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा। इसलिए आज की शुरुआत भी हम ऐसी ही एक मुस्कुराहट वाले गाने के साथ कर रहे हैं। मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से।

प्राची सिंह बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी एक बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं,

जब 9 बजने के आसपास का समय है तो भी गर्मी जो है वो परेशान करने लगी है। सोचिए दोपहर में 11 बजे से 3 बजे तक क्या होता है, और उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को बिल्कुल ठीक रखें। वैसे तो सुबह से ही ठीक रखना ज़रूरी है, लेकिन उस समय आप एक तो जब बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप ढीले ढाले सूती कपड़े पहने या छाते का इस्तेमाल करें, और अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें, यानी खूब पानी पिएं। बेशक उसमें नींबू पानी हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है। खाना भी खा रहे हैं तो हल्का सुपाच्य भोजन अगर आप लेंगे तो आप ठीक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्यास नहीं भी लग रही होती तो भी ज़रूरी है कि छाछ, आम पन्ना, नारियल पानी जो आजकल काफ़ी कॉमनली मिल जाते हैं, इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और खाना जब हम कम खाने की बात करें, सुपाच्य या हल्के भोजन की बात करते हैं, तो उसमें आप जो मौसमी फल हैं उन्हें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा, ककड़ी, संतरा, ये सब। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि जो भारी मसालेदार खाना होता है या बासी खाना होता है, उसे खाने से आप बचें ताकि आप बिल्कुल ठीक रह सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम ठीक ठाक रहें। वैसे हम सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार जब कोई बताता है ना तो वापस याद आता है कि अरे सुबह से तो हमने सिर्फ 2 ही ग्लास पानी पिया था, अभी तो हम और पी सकते हैं। तो एक छोटा सा टिप पूरे दिन को ठीक रखने के लिए या पूरे दिन अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए ज़रूरी हो जाता है। बस ऐसे ही टिप्स लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं म्यूजिकल दिल्ली।

8:54 और ठीक 4 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल ट्यून इन किया है आपने और ये है म्यूजिकल दिल्ली। वैसे इस समय

है, लेकिन फिलहाल पूनम चलती है, पर आप कहीं नहीं जाएंगे, आप रहेंगे एआरएफएम गोल्ड के साथ ही। कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल लगी का सफर जारी रहेगा। नीतू होंगी आपके साथ, तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड सुनते रहिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया है। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमरीका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। और आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Subhadra Ramachandran. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. A report.
1: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
3: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC Bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West and Ministry of External Affairs CB George informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
4: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
3: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann met Union Agriculture Minister Shivraj Chauhan in New Delhi yesterday, apprised him about various agriculture chain challenges facing the state and stressed on value-added crop cultivation. Mr. Chauhan assured him that the central government is committed to the welfare of Punjab's farmers, be it cotton mission, pulse mission, oilseed mission or horticulture, the centre and Punjab will work together. He also addressed the Chief Minister's concerns and told him that a special committee would be constituted to examine the issue of hybrid paddy seeds and ensure smooth procurement operations in the state. In Uttar Pradesh, a sudden change in weather conditions has caused widespread devastation across the state with storms, heavy rain and lightning strikes, claiming 60 lives in the last 24 hours. 17 people died in Prayagraj, while 15 in Bhadohi district, 10 in Mirzapur, 9 in Fatehpur, 5 in Badayun and 4 deaths are reported in Bareilly district. More than 100 people got injured also and have been admitted to hospitals. Hailstorm accompanied with rain have damaged crops badly. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. In IPL cricket, Virat Kohli created history, broke several records during Royal Challengers Bengaluru's 6-wicket victory over Kolkata Knight Riders in Raipur last night. Kohli scored an unbeaten 105 runs off 60 balls, including 11 fours and 3 sixes. It was his 9th IPL century, the most by any player in the tournament's history. During his innings, Kohli also completed 14,000 T20 runs, becoming the first Indian fastest player ever to reach a milestone. And that is the end of this news bulletin.

हम और आप चाहे जितने परेशान हो, चाहे जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ना, पता नहीं कहाँ से एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और इसीलिए बार बार हम आपको कहते हैं कि बाहर निकलिए, थोड़ा सा खुली हवा में सांस लीजिए, जी भर के लंबी गहरी सांसें। मैं जब भी आकाशवाणी में एंटर करती हूँ ना, तो एंट्री के साथ ही जब वो आता है, एक खुला मैदान जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, तो हर बार ना मुझे दो फुदकती हुई लव बर्ड्स दिखती हैं, और वो दोनों ऐसे फुदक फुदक के चल रही होती है कि उन्हें देखते ही ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यही फायदा है बाहर निकलने का। दीवार के साए में कब तक बैठे रहेंगे, बाहर निकलिए। चलिए गाना सुनते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, मैं हूं नीतू आपके साथ, और म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप।

बिल्कुल रुक जाइए। आकाशवाणी कब से सुन रहे हैं आप? मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरे मम्मी और मेरे पापा भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो यानी कि आकाशवाणी को हम सब जमानों से सुनते आ रहे हैं और 90 वर्ष अब पूरे होने जा रहे हैं, जिसका जश्न भी हम सब मिलकर मना रहे हैं। तो इस जश्न में थोड़ा सा हम आपके ज्ञान को भी जांचते हैं कि आखिर कितने बड़े फैन हैं आप आकाशवाणी के। तो इसीलिए हम हर बार हर रोज एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आज का सवाल ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र थे? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर आप उन केंद्रों का नाम भी बता देंगे तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर आप सिर्फ केंद्र कितने थे ये भी बता देंगे तो भी चलेगा। और जिसने सही जवाब दिया उनमें से कोई एक लिसनर आज आकाशवाणी पर हमसे बात भी कर सकता है, यानी हम दो लोग आपस में बात करेंगे जिसे सब लोग सुनेंगे। और आपको अपने जवाब भेजने हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। आप हमेशा से जानते हैं यही है fmgoldairdelhi@gmail.com, जिस पर आपको इस सवाल का जवाब भेजना है जो मैंने अभी पूछा। दोबारा से दोहरा देती हूँ कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र थे? आप जवाब खोजिए, भेजिए, तब तक मैं गानों का सिलसिला तो जारी रख ही रही हूँ ना।

बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ना हम एक साथ जब कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ हारते भी हैं, बहुत कुछ जीतते भी हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका फोकस ना एकदम अटल होता है और इसीलिए वो बहुत सारी चीजें इतने महारत के साथ कर लेते हैं कि बस हमें लगता है वाओ, तभी वो रिकॉर्ड्स बनते हैं। अब जैसे ह्यूमन क्रेन के नाम से मशहूर एगमॉन्ट हैं, जिन्होंने अपनी गर्दन के सहारे 9,860 किलो की बस को 20 मीटर तक खींचकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ हम लैपटॉप पर काम कर करके लोगों की गर्दन दर्द कर लेती है और वहाँ उन्होंने गर्दन से बस को खींच लिया, कितनी स्ट्रांग होगी ना उनकी नेक। कुछ वक्त पहले अमेरिका की एक 90 वर्ष की एथलीट महिला ने 2 मिनट 52 सेकंड तक हेड हैंग पोजीशन में रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। 90 साल की उम्र में इतनी हिम्मत करना ही बड़ी बात है, तभी तो लोग जो हैं ऐसे लोगों पर आशिक हो जाते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

ये है म्यूजिकल दिल लगी, मैं हूं नीतू आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अभी फिर से पूछ लेती हूं क्योंकि कुछ जवाब आए हैं, ज्यादातर सही हैं, जो कि मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ज्यादातर जवाब सही हैं। तो मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं कि जब देश आजाद हुआ था तो आकाशवाणी के कितने केंद्र थे? और जवाब आपको भेजने हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। तो बस आप इन सवालों के जवाब भेजिए, तब तक मैं आपको गाने सुनवा रही हूँ, आप गानों का आनंद उठाते रहिए।

एक महिला जो घर संभालती है, एक महिला जो बाहर काम भी करती है, एक महिला जो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन वही महिला जो है कई बार हिंसा का सामना भी करती है, तो ऐसी ही महिलाओं के लिए एक व्यवस्था है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जहां पर हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला किसी भी समय मदद ले सकती है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को वन स्टॉप सेंटर सखी पर एक जगह पर पुलिस डेस्क, कानूनी सहायता, चिकित्सा और काउंसलिंग की सुविधा के साथ साथ अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वन स्टॉप सेंटर योजना इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत अम्ब्रेला योजना की एक उपयोजना है। ये योजना महिलाओं को सुरक्षित माहौल देकर उनके अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

हम और आप तो एक दूसरे के लिए है ही, लेकिन ये पर्यावरण भी तो हमारे लिए ही है। अभी तक हम वाटर, एयर, सॉइल पोल्यूशन सुनते आए थे, पिछले कुछ सालों में इनमें नॉइज पोल्यूशन भी जुड़ गया है, लेकिन अब ये लिस्ट ना कुछ बढ़ती हुई सी नजर आ रही है। अब इसमें लाइट पोल्यूशन भी शामिल हो गया है। पिछले 8 सालों में दुनिया भर में आर्टिफिशियल लाइट 16% तक बढ़ी है, जिसका असर हमारी रातों की नींद और चैन पर तो पड़ ही रहा है, जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। 20-60% तक समुद्री कछुए कृत्रिम रोशनी के कारण रास्ता भटक जाते हैं। अमेरिका में सालाना 1 बिलियन से ज्यादा पक्षी प्रकाश प्रदूषण के संपर्क में आने से अपनी जान गंवा बैठे हैं, और रातों की शान जुगनू, जिन्हें जो हम देखते रहना चाहते हैं, जंगलों में लोग जाते हैं इसलिए ताकि जुगनू की चमक देख सकें, वो जुगनू के 70% आबादी भी इस चमकती रोशनी की वजह से प्रभावित हुई है। सोचिए, क्या हम सच में दुनिया को बेहतर बना रहे हैं? इस पर विचार करने की तो सच में जरूरत है, आपको नहीं लगता? और सिर्फ विचार ही नहीं, एक्शन लेने की भी जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जुगनू सिर्फ गानों में ही रह जाएं।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

गोल्ड पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी और हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर जश्न भी मना रहे हैं, जिसमें हम हर रोज आपसे एक सवाल पूछते हैं। आज का सवाल ये था कि जब देश आजाद हुआ तो आकाशवाणी के कितने केंद्र थे। सही जवाब तो आपको वो लिसनर ही बताएंगे, लेकिन हाँ, जिन्होंने सही बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सही जवाब दिया है उन सबके नाम मैं फटाफट बता देती हूँ। नवीन भाटिया, तिलक राज अरोड़ा, संतोष सक्सेना, वरुण गुप्ता, सुशील आर पठानिया, कृष्ण कुमार गुप्ता, हेमंत साखरदांडे, मनीषा साखरदांडे, शत्रुघ्न लांबे, सुदर्शन मुखी, अरुण अरोड़ा, एसपी गोयल, सचिन कुमार, देव वर्मा और प्रकाश गोगिया, इन सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन सबसे पहला सही जवाब जिन्होंने दिया उनका नाम है आशीष गायकर और वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो आशीष।

0: मेल में बिल्कुल सही जवाब दिया था। टोटल 6 केंद्र थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। और जो 3 केंद्र थे वो अब उधर चले गए हैं, जो
1: वो अब उधर चले गए। हाँ जी मैम,
0: आपने मतलब मेल में किसी से पूछ के लिखा था क्या जवाब?
1: नहीं मैम।
0: चलिए ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी गलतियां भी हो जाती है। जो 6 केंद्र थे, आप ये बताइए, आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हुए हैं?
1: मैम मैं पिछले 10 सालों से आकाशवाणी सुन रहा हूँ, और आकाशवाणी में जो आप सारी बातें बताते हैं हमेशा से हर एक प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत क्लियर होती है ना, बहुत ज्यादा शोर शराबा, अच्छे शब्दों का चयन करते हो आप जब भी बात करते हो, और वो हमें बहुत पसंद आती है।
0: मैं
1: आईटी में डिजास्टर रिकवरी मैनेजर हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर हूँ एक कंपनी में, इंटेल सॉल्यूशंस में, और मैं हमेशा मतलब जब भी ड्राइव करके जाते हैं या घर पे जब भी रहते हैं, हम हमेशा एफएम गोल्ड आकाशवाणी सुनते रहते हैं मैम।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई आपका पसंदीदा गाना ऐसा है जो हम आपको सुनवा सके, क्योंकि आपने सही जवाब दिया था मेल पर, भले ही आपने ऑन एयर गलत जवाब दिया, लेकिन चलिए कोई नहीं, आपने मेल पर सही जवाब दिया था, तो बताइए कौन सा गाना हम आपको सुनवा सकते हैं?
1: मैं मेरी महुआ सुनना चाहूंगा, महुआ फिल्म से।
0: चलिए ठीक है, तो आप ये गाना सुनिए, इंजॉय कीजिए, और हम लौट कर आते हैं फिर से। आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, और हम क्योंकि जो जश्न मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर, और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आकाशवाणी के कितने केंद्र थे जब देश आजाद हुआ, तो 6 केंद्र थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। और अब ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के भारत में 470 से ज्यादा प्रसारण केंद्र है। आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क्स में से है, जिसमें हम सूचना शिक्षा के साथ साथ सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं संगीत का, और संगीत के कार्यक्रमों का जब आनंद लेते हैं और जब बात होती है, तो फिर चाहे संगीत फिल्म संगीत हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, सबका आनंद लिया जाता है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम को भी आपने आकाशवाणी पर सुना होगा। पहली बार ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया था 1952 में, और तब से अब तक इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी पर किया जाता रहा है। और अब अगला जो गाना आ रहा है वो आशीष गायकर की पसंद का आ रहा है, महुआ फिल्म से। तो आप इस गाने का आनंद उठाइए।

आशीष गायकर की पसंद पर आपने ये गाना सुना था, जिन्होंने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है ये, एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, और अब वक्त हो रहा है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले। तो आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आपसे 10:30 बजे मुलाकात होगी दिल का मेल बॉक्स में, और वहां पर भी शिरकत करने का एक ही तरीका है, fmgold@delhi.gmail.com, उस पर मेल कीजिए, अपनी पसंद के गाने हम तक भेजिए और हम आपको आपकी पसंद के गाने सुनवाएंगे। अभी तो आपको मेरी पसंद से काम चलाना पड़ेगा, और ये आखिरी गाना आप सुनिए, एंजॉय कीजिए, नीतू को इजाजत दीजिए।

ये काव्य भिंदता सात स्वरांची सुरई भरता नयन ये काव्य भिंदता।

प्रीति वासुन कुटे यौवन दिसे तांदने काचन गाविना प्रीति वासुन कुटे यौवन काव्या सह है कधी भाव।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारकू में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगटोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागृति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागृति टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं, उन्हें याद करने वाले हैं जिनके जो ऑन स्क्रीन किरदार थे वो इतने ज़्यादा असरदार रहे कि लोग उन्हें वही समझ बैठते थे जो किरदार वो पर्दे पर दिखाया करते थे। जी हाँ, एक ऐसे कलाकार जो चमके थे 50 और 60 के दशक में। तो कौन है वो, पहले उनका गाना सुनाती हूँ, आपको खुद भी अंदाजा लगाना है, ठीक है? तो मिलकर सुनते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज, साथ में आपने सुनी कमल बरोद की आवाज। पारस मणि फिल्म का ये गाना है और पारस मणि में के इस गाने में जो नृत्य कर रही हैं दो सुंदर सुंदर कन्याएं, उनका नाम है जीवन कला और नलिनी। वैसे वो किसके सामने नाच रही हैं? उनके बिल्कुल सामने बैठे हैं महिपाल। 50 और 60 के दशक में जितनी भी धार्मिक फिल्में रिलीज हुआ करती थीं उनमें ज्यादातर में महिपाल ही नजर आते थे। वो उस दौर के सुपरस्टार थे, खास तौर से माइथोलॉजिकल फिल्मों के लिए उन्हें पहचान मिली। दोस्तों 24 नवंबर 1919 को जोधपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। महिपाल को बचपन में महिपाल भंडारी के नाम से जाना जाता था और फिल्मों में वो सिर्फ महिपाल के नाम से मशहूर हुए। महिपाल को लिखने का बहुत शौक था और ये जो शौक है ये उन्हें विरासत में मिला। उनके बारे में आज बहुत सारी बातें सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना सुनहरी नागिन फिल्म से ये गाना, जो कि फिल्माया गया था हेलन और महिपाल पर। दोस्तों, आज अभिनेता महिपाल

नेपाल की हम बातें कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। अभिनेता महिपाल के दादाजी एक जाने माने लेखक थे और कवि थे। उनका नाम था बजरंग चंद। कहते हैं कि महिपाल महज 6 साल के थे जब उनकी माँ चल बसी। महिपाल का ज्यादातर वक्त अपने दादाजी के साथ गुजरता और उनके साथ महिपाल भी छोटी सी उम्र में ही कविताएं और गीत लिखने लगे। महिपाल एक कला प्रेमी थे, पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आते, इतिहास की भी उन्हें गहरी समझ थी। कॉलेज के दिनों में महिपाल ने एक कविता लिखी थी, किसान उसका शीर्षक था। ये इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि लोग उन्हें इसी कविता को पढ़ने के लिए खास तौर से बुलाया करते। दोस्तों, इसी दौरान महिपाल ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि महिपाल को बचपन में कुछ खास रुचि नहीं थी अभिनय में, लेकिन वक्त के साथ मिजाज भी तो बदल ही जाता है। और वक्त के साथ संगीत कितना ज्यादा बदल गया है, पसंद

0: आकाशवाणी समाचार सोनल परमार वाँचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। नवी दिल्ली में ब्रिक्स देशों विदेश मंत्रियों की बे दिवसीय बैठक शुरू। सीबीआई कथित नीट यूजी पेपर लीक केस में चार मुख्य आरोपियों की धरपकड़ करी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहूं कि एनडीआरएफ बे दायकाना टूंका गाड़ा में देश नागरिकों विश्वास जीत्यो। अमेरिका और चीने हरीफ नहीं पण भागीदार बनवाना सूर साथ ट्रम्प जिनपिंग की बैठक। केन्द्रए खांडनी निकास पर 30 सप्टेम्बर सुधी प्रतिबंध मूक्यो। शेरबजार में तेजी माहौल, सेंसेक्स 800 अंक उछड़ो। समाचार विगतवार। नवी दिल्ली में ब्रिक्स देशों विदेश मंत्रियों की बे दिवसीय बैठक चाली रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अध्यक्षता कर रहा है। आ बैठक में ब्रिक्स देशों विदेश मंत्रियों और सभ्य और भागीदार देशों प्रतिनिधिमंडलों वड़ाओ भाग ले रहा है। भारत की अध्यक्षता में आ वर्ष की बैठक स्थितिस्थापकता, नवीनता, सहकार और टकाऊ विकास माटे निर्माण थीम पर आधारित है। आ थीम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मानवता प्रथम और लोक केन्द्रित दृष्टिकोण थी प्रेरित है। आ प्रसंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जणाव्युं कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था मूल में छे। तेमणे भार मूक्यो हतो कि ताजेतरना संघर्षोए संवाद और राजद्वारिता महत्व ने वधु प्रकाशित कर्युं छे। तेमणे भार मूकता जणाव्युं कि जटिल और अनिश्चित विश्व में समानतानी सिद्धांतों सामान्य परंतु अलग जवाबदारीओने जाळवी राखीने चर्चाओ टकाऊ विकास तरफ दिशामान थवी जोईए।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
2: In strengthening cooperation against terrorism.
0: आ बैठक में ब्राजील, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात ना विदेश राज्यमंत्री और दक्षिण आफ्रिका ना विदेश मंत्री रोनाल्ड लामुला सहित अन्य लोगों हाजरी आपी रहा है। बैठक दरमियान ब्रिक्स देशों ना विदेश मंत्रियों परस्पर हितना वैश्विक और प्रादेशिक मुद्दाओं पर चर्चा करशे। तेओ आजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साथे पण मुलाकात करशे। शुक्रवारे अबुधाबी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जारे संयुक्त अरब अमीरात यूएई ना राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहिया ने मळशे त्यारे भारत अने यूएई तेमनी मजबूत भागीदारी ने नवी टोचे पहोंचाडशे। आ मुलाकात बन्ने देशों वच्चे उच्च स्तरीय संबंधों ने वधु मजबूत बनावाना एक वर्ष पछी थई रही छे, जेमां ताजेतरमां आ वर्षे जान्युआरीमां यूएई ना राष्ट्रपतिनी नवी दिल्हीनी मुलाकातनो समावेश थाय छे। जे छेल्ला दायकामां शेख मोहम्मदनी भारतनी पांचमी यात्रा हती अने यूएईना राष्ट्रपति तरीके तेमनी त्रीजी सत्तावार मुलाकात हती। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआईए कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक केसना संदर्भ में चार मुख्य आरोपियों की धरपकड़ करी छे। आरोपियों की ओळख मांगीलाल बीवाल, दिनेश बीवाल, हरियाणा निवासी यश यादव और मांगीलाल पुत्र विकास तरीके थी है। चार ही गई काले जयपुर की धरपकड़ करवामां आवी हती अने मेजिस्ट्रेट समक्ष रजू करवामां आव्या हता। बाद में तेमने ट्रांजिट रिमांड पर लेवामां

महेंद्र कपूर की आवाज में कण कण में भगवान फिल्म का ये कितना खूबसूरत गाना है, एक एक शब्द बहुत ही प्यारा, बहुत ही सच्चा। ये गाना आपने सुना और मैं आपको बता दूं कि महिपाल की एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही है कण कण में भगवान, उनके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था इस फिल्म में। दोस्तों, महिपाल को सबसे बड़ी जो पहचान मिली वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के लिए ही मिली। इस कड़ी में संपूर्ण रामायण, वीर भीमसेन, वीर हनुमान और हनुमान पाताल विजय, जय संतोषी माँ जैसी हिट फिल्में हुआ करती थीं और महिपाल इन सभी फिल्मों में मुख्य अभिनेता बनकर नजर आए। उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान विष्णु आदि के किरदार निभाए और इन भूमिकाओं को निभाने का एक बहुत ही गहरा असर रहा। जी हाँ, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगे थे और वो जहाँ पर भी जाते थे लोग उनके जयकारे लगाते और उनके पैर छूने लग जाते थे। उन्हें बहुत बहुत सम्मान मिला इन फिल्मों में काम करने के बाद। दोस्तों, फिल्मों में धार्मिक किरदार सबसे ज़्यादा बार निभाने का जो रिकॉर्ड है वो भी महिपाल के ही नाम है।

0: लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के साथ कमल बरोद की आवाज में सती सावित्री फिल्म का ये गाना आपने सुना। दोस्तों, महिपाल ने पौराणिक फिल्मों के अलावा कई कामयाब एडवेंचर और स्टंट फिल्में भी की, जैसे कि अली बाबा और 40 चोर, अलादीन और जादुई चराग, रूपलेखा, पारस मणि, जबक और अरेबियन नाइट्स। ये कुछ फैंटेसी फिल्में थीं और इन फिल्मों के लिए बाकायदा घुड़सवारी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली थी महिपाल ने। वो अपने हर किरदार में बस खो ही जाते थे। दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास फिल्म का अब मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ, जिसका जिक्र किए बिना आप महिपाल की जो कहानी है, उनके करियर की जो बातें हैं, वो इनकम्प्लीट मानेंगे। और ये फिल्म थी नवरंग। इसमें उन्होंने दिवाकर का किरदार निभाया था, जो बहुत बहुत पसंद किया गया था।
1: Peace.

0: तो दोस्तों, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में नवरंग फिल्म का ये गाना आपने सुना। आज 40 से 60 के दशक के गाने, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिद अरब अमारात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वज़ीर आला के लिए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सरे फहरिस्त है। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मेंबर ममालिक और साझेदार मुल्कों के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन सलामती आलमी निज़ाम में बदस्तूर मरकजी हैसियत रखते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हालिया महाज आरआई से बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत उजागर

0: होनी चाहिए।
1: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
0: डॉक्टर जयशंकर ने शरीक ममालिक का उनकी मौजूदगी और ब्रिक्स तरीक़ेकार को मुस्तहकम करने की खातिर जारी इश्तराक के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी साझेदार और मेंबर ममालिक दोतरफा और कसीर रुखी राब्तों के जरिए करीबी और मुसलसल राब्ते में रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज की ब्रिक्स मीटिंग नज़रियात के तबादले और तरक्की के हवाले से हम आहंगी के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह इंडोनेशिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने जामे कलीदी भारत इंडोनेशिया साझेदारी और जनूब मशरिकी एशियाई ममालिक की अंजुमन के साथ इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबूज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे, जिसके नतीजे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद मजबूत शराकतदारी को एक नई सतह तक ले जाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह पर बढ़ते हुए राब्तों के बाद वज़ीर आज़म वहां के दौरे पर जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने इस साल जनवरी में नई दिल्ली का दौरा किया था और गुज़िश्ता 10 साल में ये उनका भारत का पांचवा और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की हैसियत से तीसरा दौरा था। दोनों रहनुमाओं ने अपनी मीटिंग के दौरान कलीदी जामे नौयत की साझेदारी का तफसीली जायजा लिया और कई अहम समझौतों का तबादला किया। इनमें से सबसे ज्यादा अहम कलीदी दिफाई शराकतदारी के लिए काम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाना भी शामिल है, जो कि दोनों मुल्कों के बाहमी सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। कांग्रेस के असेंबली मेंबर वीडी सतीशन केरलम के नए वजीर आला होंगे। कांग्रेस लीडर दीपा दास मुंशी ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि आफात से निमटने वाली कौमी फोर्स NDRF ने अपने 20 साल के मुख्तसर क्याम में ही मुल्क के 140 करोड़ आवाम का एतमाद जीत लिया है। वजीर दाखला ने यह भी कहा कि आफात से निमटने के सिलसिले में भारत एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है और ये दुनिया में इस तरह का कदम उठाने वाला सबसे पहला मुल्क है। वजीर दाखला ने यह बात गाजियाबाद में NDRF को सदर का परचम दिए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब शाह ने कहा कि जब भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई आफत आती है या आने वाली होती है तो NDRF के अमले के वहां पहुंचने के बाद लोग राहत का सांस लेते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी फोर्स को सदर का परचम मिलना निहायत फख्र की बात है। जनाब अमित शाह ने कहा कि सदर जमहूरिया ने साथ ही साथ NDRF, SDRF, पंचायत, रियासती इंतजामिया, NCC, NSS और हजारों आपदा मित्रों की खिदमत को भी सराहा।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
3: ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में बातचीत शुरू की है, जिसे सदर ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया है, जिसमें ईरान जंग और बाहमी तिजारती कशीदगी समेत वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबालिया दिया गया और उन्होंने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वो उनके साथ आला सतह पर बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में आज सदर ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ लोग अब तक की सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं, जहां बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर चीन के सदर के साथ बातचीत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं।

0: दोनों रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमरा अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतही वफद भी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जायगार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ एक मामले में छापे की कार्रवाई अंजाम दे रही है। ये छापे गैर मुल्की करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक कानून FEMA फेमा के जाब्तों के तहत 14 लोगों और कंपनियों से वाबस्ता मकामात पर मारे जा रहे हैं। अपने बयान में ईडी ने कहा है कि इस मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की गई है कि जायगार टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से पैसे वसूल रही है। और बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। आलमी नंबर 12 खिलाड़ी सिंधु ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेनमार्क की एमेली शुल्स को स्ट्रेट गेम्स में 28 मिनट में 21-13 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं सत्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के बरियान जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल को स्ट्रेट गेम्स में 21-12 21-19 से हराकर आखिरी 8 में अपनी जगह बना ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2 रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर 2 तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए VD सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. India asserts BRICS expected to play constructive role amid global uncertainty and economic challenges. 2-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs and trade tensions high on agenda. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Satvik Sairaj and Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. India today asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the 2-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
2: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways

0: The two superpowers will be better than ever before. The US President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The US President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: Our discussions must advance.
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत

0: करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
0: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं

0: प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला

0: और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज वंदना कट्टी यांचं गायन आपल्याला ऐकवत आहोत। वंदना कट्टी यांनी गायलेला राग गावती विलंबित आणि द्रुतबंदीश 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ मिलिंद जोशी यांनी आणि हार्मोनियमची साथ प्रकाश वगळ यांनी केलेली आहे। ऐकूया वंदना कट्टी यांनी गायलेला राग गावती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अखराड़ा प्रेम ना चाड़ा एम ने कहूं छू आ प्रेम यज्ञ मा अर्पण तर्पण जे कहीं करव हो दिलू समर्पण करो पूछो नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह।

मुकुल चौकसी कहे छे, दाढ़ी करता जो लोही निकले ने कोई पालव याद आवे ई प्रेम छे। मित्रों में कहूँ तो ने प्रेमनी तमे जेटली व्याख्या करो ने एटली ओछी। तो अपना लिस्नर प्रफुल्ल लाखाणी कहे छे, कोई पण कारण वगर जे सहज रीते थाय ए प्रेम छे। तो मित्रों प्रेमनी व्याख्या एटली बधी विशाळ छे ने के दरेके दरेक व्यक्तिना मन एनी व्याख्या साव जुदी जुदी होय छे। कोईनुं कहेवुं छे जेनाथी दिल लागे ए प्रेम नथी। हा, जेनी साथे तमारू दिल लागे ए प्रेम नथी, पण जेना वगर तमारू दिल ना लागे ए प्रेम छे। तो मित्रों प्रेम एटले मात्र शुं एक युवक अने एक युवती वच्चे जे थाय एज प्रेम छे, के पछी प्रेमनी व्याख्या एना करता बहु विशाळ छे, बहु व्यापक छे। प्रेम धरती माता साथे थाय, प्रेम देश साथे थाय, प्रेम तमारी मातृभाषा साथे थाय, प्रेम तमारा खुदनी साथे थाय, प्रेम प्रकृति साथे थाय, प्रेम तमारा कोई शौखनी साथे थाय, प्रेम कोई फिल्म के कोई पुस्तक साथे पण थाय। मित्रों प्रेमनी तमे जेटली व्याख्या में बांधशो एटलो ज प्रेम विशाळ बनतो जशे।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम एकदम खरा सोना जेवू गीत गुर्जरी मित्रों जयेश भाई नो फोन हतो अने एमनु कहेवू छे आखी दुनिया माटे ए एक व्यक्ति छे परंतु मारा माटे ए आखी दुनिया छे क्या बात है। तो मित्रों आ छे प्रेमनी बीजी एक व्याख्या कि तमारी दुनिया एक व्यक्ति में समाई जाए ए प्रेम परंतु ए समझातो नथी के आखी दुनिया तमने जे व्यक्ति में देखाय जो ए प्रेम होय तो धीरे धीरे आ दुनिया समेटाती केम जाय छे एनो सरवाळो थवो जोईए प्रेमनो प्रेमनो गुणाकार थवो जोईए परंतु जेम जेम वर्षो वीतता जाय तेम तेम आ प्रेमनी बादबाकीने भागाकार केम थाय छे। अपनी पास जवाब हो तो तरत फोन उपाड़ो नंबर है 0224515414 0224515414। प्रेम एटले शू आपे मने जणावानो छे।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम गीत गुर्जरी। मित्रों, कोईनो प्रेम क्यारेय ओछो नथी होतो, मात्र आपणी अपेक्षाओ ज वधारे होय छे। प्रफुल्ल लाखाणीनुं एवुं कहेवुं छे कि प्रेममां ज्यारे स्वार्थ आवे छे, अपेक्षाओ आवे छे, ત્યારે જ આ પ્રેમની બાદબાકી થવા લાગે છે અને ભાગાકાર થવા લાગતો હોય છે।

0: मने दरियो समझीने प्रेम करती नहीं, तारी आँखों में कईक तो जरूर छे। मित्रों, महेश शाहनी आ रचनानी साथे ज मने तरुलता करोडियाने आपो हवे रजा। फरी मळीशुं वचन साथे। नमस्कार, 4 वागे आप सांभळशो समाचार।
1: आय केम छो बानु? आय जोने मौसम केवी मजेनी छे।
2: अरे छट,
1: अरे एमा गुस्सो सु करो छो बानु?
3: एम एम एम ए जरा एम आवनी, ए थोड़ा एम
1: अपने थोड़ो कुं कुं कुं करी लेए।
2: के के के ए शू
1: ए कुं कुं कुं नची खबर? अरे डिक्री लव लव
2: हवे जाय छे मारा रोया के मारू एक छुट्टू खासड़ू।

0: है तुम्हारे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से भेंट की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। ये मुलाकातें नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष की बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। श्री शाह ने कहा कि भारत आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है। कांग्रेस ने वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया था। निर्वाचन आयोग ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन की राजधानी पेचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। झारखंड की छात्रा भाव्य रंजन ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा में कला विषयों में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। वे पूरे देश में टॉपर बनी हैं। इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, today called on Prime Minister Narendra Modi. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
0: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
3: Dr. S. Jaishankar said, recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.
0: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
3: The government has said that effective steps have been taken to ensure the availability of adequate crude oil, LPG and natural gas across the country. Addressing the interministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today, Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that domestic LPG supply across the country remains smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Ms. Sharma said that to minimize supply chain disruptions, commercial LPG restoration has reached nearly 70%. Secretary of Ports, Shipping and Waterways Mukesh Mangal said that two vessels carrying more than 90,000 metric tons of LPG with over 20 crew members crossed the Strait of Hormuz last night and are expected to arrive on the 16th of this month. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheesan as the new Chief Minister of Keralam. The announcement was made by Congress leaders Ajay Makan, Mukul Vasnik and Deepa Dasmunshi during a press conference in New Delhi. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Jharkhand student Bhavya Ranjan has created history by securing 499 out of 500 marks in the CBSE Class 12 Arts exam.

0: www.rajiv.gov.in. National Investigation Agency has invited nominations for deputation posts of Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police for all India postings. There are two vacancies for Additional SP in Pay Matrix Level 11 and three vacancies for Deputy SP in Level 10. Eligible officers are required to submit applications through proper channel along with APARS, vigilance clearance and other supporting documents within 45 days from the publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria and application formats is available on the NIA recruitment portal. The website is www.nia.gov.in. I repeat the website, kindly refer to www.nia.gov.in. National Institute of Social Defense under the Ministry of Social Justice and Empowerment has invited applications for filling up one post of Deputy Director Training, NCDAP, on transfer or deputation basis. The institute is located in Dwarka, New Delhi. The post carries the pre-revised pay scale of 10,000 to 15,200. Eligible candidates are required to submit their applications within 45 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed information regarding eligibility criteria, application procedure and terms of deputation is available on the official website. That is at www.nisd.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन सभी पदों के लिए एक एक पद की रिक्ति उपलब्ध है। पद हैं रीडर वाक रोग विशेषज्ञ समूह ए, पुनर्वास अधिकारी समूह ए, व्याख्याता शिक्षा समूह ए, व्याख्याता श्रवण वाक रोग विज्ञान समूह ए, व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी, लेखाकार समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समाज कार्य समूह बी, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रुप बी, तकनीकी सहायक ऑडियो विजुअल समूह बी, मनोवैज्ञानिक समूह बी, कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार समूह बी और डेटा एंट्री ऑपरेटर समूह बी। इनमें व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी के दो दो पद उपलब्ध हैं। अहमदाबाद और छतरपुर स्थित सीआरसी में जिन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं वे हैं निदेशक सलाहकार एक पद, सहायक प्रोफेसर दो पद, विशेष शिक्षा में व्याख्याता दो पद। इन पदों के लिए पात्रता संबंधी विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताएं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वेबसाइट का पता है www.ayjinishd.nic.in। कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास आयुक्त कार्यालय के लिए उच्च श्रेणी लिपिक के दो पद उपलब्ध हैं। इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट www.csez.gov.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपनिदेशक कृषि एक पद, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल एक पद, प्रधान निजी सचिव दो पद, लेखाधिकारी एक पद, उच्च श्रेणी लिपिक एक पद तथा अवर श्रेणी लिपिक एक पद। पात्रता शर्तों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट jalshakti.gov.in तथा केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी

0: तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध है, जिसका पता है www.cwc.gov.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज एयरफील्ड अमेठी विमान अनुरक्षण अभियंता के एक पद के लिए आमंत्रित कर रहा है आवेदन। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की वेबसाइट को देख सकते हैं igrua.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और ले चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। और इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज के डेटलाइन सेगमेंट में हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, उन छोटे छोटे कामगारों की जिन्हें हम कहते हैं कि वो वाकई में अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार उनको वो मौके नहीं मिलते हैं जिससे कि उनकी प्रतिभा को एक मंच मिले और उनको आर्थिक सशक्तिकरण मिले। लेकिन सरकार की जो अब योजनाएं आई हैं उनसे उन्हें मिल रहा है सशक्तिकरण। किस तरह से मिल रहा है आपको बताएंगे डेडलाइन में। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार जागृति, and to our listeners, namaskar, good afternoon, well, good day everybody. Well, this is Parikrama and Jagriti already told you there is so much that we'll explore, that we'll unfold and we'll discuss about. There is so much to do. Well, yes, selection of news, then our discussion segment Dateline India. We will be discussing about MSMEs in great detail in just a few moments. But first, let us begin with the headlines, Jagriti, straight away.
2: Bilkul. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू।
3: इंडिया एंड यूएई सेट टू टेक बायलैटरल टाइज टू नेक्स्ट लेवल ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू अबू धाबी टुमारो।
2: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
3: होम मिनिस्टर अमित शाह सेज इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन डिजास्टर मैनेजमेंट।
2: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।
3: एंड इन बैडमिंटन इंडियाज पीवी सिंधु एंड मेन्स डबल्स पेयर ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी एंटर क्वार्टर फाइनल्स ऑफ थाईलैंड ओपन। So listeners, this is our discussion segment Dateline India. Let's start with it. Well, again, empowering the grassroots economy through rural and semi-urban MSME, such a great topic. So there was a time, Jagriti, when a small shop in a village or somewhere else as well, or tiny workshop in a semi-urban town survived only on hope, on hard work and word of mouth as well.
2: बिल्कुल। और एक कुम्हार जो होता है वो अपने साप्ताहिक बाजार में खरीदारों का इंतजार करता है। शगुन, एक जो दर्जी दिन रात कपड़े सिल रहा है वो भी इंतजार करता है और इस चिंता में रहता है कि क्या उसे समय पर भुगतान मिलेगा।
3: विलियस एंड अ वुमन रनिंग अ होममेड पिकल बिजनेस वंडर्ड यूज्ड टू वंडर इफ अ ड्रीम कुड एवर ग्रो बियॉन्ड हर नेबरहुड एंड पीपल वुड लाइक टू taste it, people would get to taste it basically. Today that story is changing steadily but powerfully. India's MSMEs, micro, small and medium enterprises are becoming the heartbeat of the nation's growth story.
2: बिल्कुल, और ये जो छोटे छोटे उद्यम हैं लोगों के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनसे तस्वीर बदल रही है। और खास बात ये है कि ये उद्यम भारत की जीडीपी में 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 49% का योगदान देते हैं और लगभग 32.80 करोड़ लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराते हैं। तो आप ये फिगर देख सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर किस तरह से अपना विस्तार कर रहा है। विदेश भेजे जाने वाले, बिल्कुल, और विदेश भेजे जाने वाले जो मसालों के बॉक्सेस होते हैं या फिर कहें कि हाथ से बने जो कपड़े होते हैं या फिर हर छोटे सर्विस सेंटर के पीछे कहीं ना कहीं एक एमएसएमई ही होता है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दे रहा होता है। तो असल में क्या होता है, जब वो सबसे छोटे उद्यमी को ये महसूस होने लगता है कि उसे भी समर्थन मिल रहा है।
3: Well, yes, and the answer, if we explore it further, it can be seen in thousands of towns, villages, districts. Well, if we take an example here, take a small woman-led millet snacks business in the district of Odisha. So a few years ago, the owner struggled to get a bank loan even because she had no collateral. Today, through government-backed schemes and digital registration platforms as well, businesses like hers, these millet business, millet snacks, they are entering the formal economy. And Jagriti, it's getting easier to access credit and find customers far beyond their local markets.
2: बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो यही असली बदलाव है क्योंकि छोटे से छोटा जब भी उद्यम शुरू होता है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर मार्केट की रीच, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते हैं। बिजनेस शुरू हो गया लेकिन रन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ये बड़े पैमाने पर हो रहा है जो बदलाव है। उद्यम और उद्यमियों को जो सहयोग मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, अब 7.90 करोड़ से ज़्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है। लाखों उद्यमियों के लिए ये महज एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि जो पहले कभी उन्हें बहुत दूर लगा करते थे उन अवसरों का प्रवेश द्वार है ये।
3: And a nation cannot become truly self-reliant if its smallest creators, they remain invisible, right? And that is precisely where these reforms are making a difference. Well, you were talking about financial assistance on a great scale. The government's focus has been very clear, to strengthen the grassroots economy from bottom upward.
2: और इससे भी ज़्यादा उत्साहजनक बात ये है कि जो ट्रांसजेंडर उद्यमी हैं उनके लिए विशेष सहयोग दिया जा रहा है इसमें, जिसमें गारंटी कवरेज में बढ़ोतरी और फीस में छूट शामिल है। इससे एक सशक्त संदेश जाता है कि विकास पर सभी का अधिकार होना चाहिए और सभी का अधिकार भी है। जिन लोगों को भी अवसर मिलता है जो काम कर रहे हैं उनके लिए अधिकार भी मिल रहे हैं।
3: So MSMEs, they are the backbone of our economy now. And what happens when a business has potential but needs investment to grow bigger? Well, this is the question which we also have been discussing so far. And this is where the Self-Reliant India Fund steps in. It is designed to provide equity support to the MSMEs. The fund has already supported hundreds of enterprises with investments worth thousands of crores. So somewhere in Gujarat, a rural textile unit may be scaling up production and hiring more workers.
2: और अगर पूर्वोत्तर के किसी हिस्से में स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के व्यवसाय की बात अगर हम करें तो अब वो राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। वो सिर्फ जहां पर लोकल मार्केट है वहीं तक नहीं है, सरकार का सहयोग है या फिर तमाम ऐसे उनको सपोर्ट मिल रहे हैं जिससे कि वो नेशनल लेवल पर भी पहुंच रहे हैं।
3: डिफरेंट स्टेट्स,
2: बिल्कुल डिफरेंट स्टेट्स हैं, सेंटर पर अगर जब वो आ जाते हैं तो बाकी स्टेट्स की रीच भी उनके लिए इजी हो जाती है। और ये सफलता की कोई इक्का दुक्का कहानियां नहीं है बल्कि ये सब मिलकर एक सशक्त भारत को आकार दे रहे हैं क्योंकि भारत केवल कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अमीरों का ही जिसे कहना चाहिए देश नहीं है। यहाँ पर अमीर है, गरीब है, हर तरह का तबका है जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूत बना रहा है। और इसके बाद
3: they're getting great, so many chances to do it right now.
2: बिल्कुल, और छोटे छोटे एफर्ट्स जब उन्हें कहीं सपोर्ट मिलता है, जो एफर्ट्स होते हैं तो वो उनके लिए एक बड़ी सफलता की कहानी भी बन जाते हैं।
3: राइट, एंड वी कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स वी अवेल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, राइट?
2: बिल्कुल,
3: सो मेनी works.
2: और हमें कई बार इससे जो वहाँ का लोकल, जैसे अभी आप बात कर रहे थे पिकल्स हो गए या कहीं पर मिलेट्स के छोटे छोटे पापड़ हो गए, तो वो जो लोकल का टेस्ट होता है वो हम सबको मिल जाता है.
3: ट्रू ट्रू.
2: और अगर बात करें बीच में जो कोविड महामारी आई उसके बाद आधुनिक इतिहास का वो सबसे कठिन दौर था, इसमें चीजें काफी बदली
3: एंड they changed quite a bit and many business

0: They feared closure, shops they fell silent, orders of course they stopped coming, and yet millions of MSMEs, they survived because of timely support through the emergency credit line guarantee scheme.
1: बिल्कुल, और बाद में कुछ रिपोर्ट्स जो आई उनसे पता चला कि लगभग 14,60,000 एमएसएमई खातों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए बनने से भी बचाया गया. इन आंकड़ों के पीछे असल में बहुत सी वजहें थी, जिसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो रेस्टोरेंट चल रहा था वो एक पारिवारिक व्यवसाय था जिसने कि अपने आप को मुश्किल दौर से बचाया.
0: Well, there was struggle at that time as well, and another long-standing struggle for MSMEs was delayed payments. Every small business owner knows this pain. So you deliver goods on time, you complete the service honestly, and the customer avails the benefits, but payment gets delayed for months. Meanwhile, salaries, they still have to be paid. So raw materials must still be purchased, electricity bills, they do not wait, even water bills.
1: बिल्कुल, सारे bills को time पर payment करना ही पड़ता है, पे करना ही पड़ता है. और इसलिए भारत ने और भी मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ इसका जवाब दिया. MSMED एक्ट के तहत खरीदारों के लिए ये ज़रूरी है कि वे माइक्रो और छोटे उद्यमों को 45 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दें. समाधान और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म व्यवसायों को डिजिटल तरीके से शिकायतें दर्ज करने और पेमेंट से जुड़े विवादों को तेजी से सुलझाने में मदद भी कर रहे हैं.
0: And India's digital revolution, it is an economic revolution actually. One of the most heartwarming parts of this transformation is the support which is being extended to traditional artisans through the PM Vishwakarma scheme. So let's think of the hands that quietly build India every day. The blacksmith shaping iron tools, the weaver creating intricate fabrics which we get to wear then.
1: बिल्कुल, पत्थर को तराश कर सुंदरता गढ़ने वाले मूर्तिकार जो कि वर्षों तक बिना किसी पहचान या व्यवस्थित सहयोग के ही अपना गुजारा कर रहे थे, पीएम विश्वकर्मा योजना उन्हें प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, टूल किट के लिए प्रोत्साहन, रियायती ऋण और एक औपचारिक पहचान प्रदान कर रही है. इस योजना के तहत अब तक 30,00,000 से अधिक कारीगर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.
0: And India is not only preserving tradition, India is modernizing tradition with dignity.
1: बिल्कुल, और पूरे देश में ऐसे लाखों प्रोजेक्ट रोजगार और आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई छोटा बिजनेस सफल होता है तो उसका असर सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उसे कहीं आगे तक पहुंचता है. बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, गांव आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं वहां पर कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं. और अगर देखा जाए तो क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है इसीलिए वहां से युवा पलायन करते हैं, तो अगर गांव में खासकर इस तरह के एमएसएमई जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो डेवलप हों, लोग शुरू करें, तो वहां
0: पर दे कैन स्टे होम विद देयर फैमिली.
1: बिल्कुल, पलायन की जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कि पलायन कर जाते हैं, गांव के गांव आप देखेंगे कि इस समय वहां पर लोग नहीं है, घरों पर ताले लगे हैं, तो ऐसे में वहां सशक्तिकरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं भी हैं वो भी मजबूत होंगी और हो रही हैं. कहीं ना कहीं जो ये अब योजनाएं शुरू हो रही हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए और इस सभी जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनसे हमारा देश और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है.
0: एंड यू एक्सप्लेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट सच इन ग्रेट डिटेल एंड नॉट ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स नॉट ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू अर्बन पॉकेट्स बट ग्रोथ रीचिंग द लास्ट माइल. एंड परहैप्स दिस एंटायर स्टोरी लीव्स अस विद One powerful realization, India's rise is not being built only in boardrooms or giant industrial parks. It is built in narrow market lanes, rural workshops, tiny stores with big dreams.
1: बिल्कुल, हर पंजीकृत कारीगर, हर स्वरोजगार करने वाला युवा, हर पहली बार उद्यमी बनने वाला व्यक्ति, हर ग्रामीण उद्यम जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में कदम रख रहा है, ये सभी मिलकर भारत की विकास गाथा का अगला अध्याय लिख रहे हैं. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज के लिए क्या विशेष है.
0: First, we'll talk about Vijayawada. So, Akashwani Vijayawada is celebrating 90 years of service with special cultural programs and public outreach activities, a major highlight being Swar Sandhya, and this features music and traditional Garaga dance performances. The celebrations will conclude with a special walkathon in Vijayawada on 19th of this month. We have more details. Let's listen in.
2: Akashwani Vijayawada conducted grand celebrations marking 90 years of Akashwani service in the fields of broadcasting, culture and public communication as part of

0: Explaining the celebrations, Akashwani Vijayawada station's program head G. Divya said,
1: "Under the evocative theme, My Companion Akashwani, the station executed an extensive outreach program that bridged generations and celebrated the enduring spirit of radio. The festivities reached a crescendo on May 10th, coinciding with the Mother's Day at the Tummalapalli Kshetraya Kalakshetram. The evening featured a high-caliber musical concert by the renowned Sarvepalli sisters, followed by the vibrant display of Andhra heritage through a traditional Garaga folk dance. The success of the evening was evidenced by a houseful auditorium with every seat occupied by a diverse audience of listeners and art enthusiasts. The resounding success of these programs is a testament to the deep-rooted bond between Akashwani and its listeners."
0: As part of the concluding phase of celebrations, Akashwani Vijayawada will organize a special walkathon in the city on May 19th. The celebrations reflect Akashwani's enduring contribution to public service broadcasting and the preservation of culture over the past 9 decades. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
2: और विजयवाड़ा से आते हैं पुणे की ओर, जहां पर युवाओं में इस समय जो सबसे अधिक समस्या देखी जा रही है नशीले पदार्थों की, इस लत को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान किस तरह से कार्य करेगा, आइए जानते हैं हमारी संवाददाता माधवी कुलकर्णी की इस रिपोर्ट में।
3: पुणे के युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसी विषय में ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट और ज्ञान प्रबोधिनी, इन दो संस्थाओं ने हाल ही में शहर में एक सर्वेक्षण किया। इसके आधार पर संयम नाम की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता होने के बावजूद वास्तविक रूप से इसके सेवन का स्तर चिंताजनक है। मित्रों के समूह और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए संपर्क, साथ ही साथ लापरवाही के कारण नशे की लत का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए पुणे में ड्रग मुक्त प्रभाग अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा,
4: पुणे शहर में हमने ड्रग्स के विरुद्ध और नशे के विरुद्ध बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग स्तर पे हमने मुहिम चला रखी है, जिसमें एक हमने जो नवनियुक्त कॉरपोरेटर्स हैं उनका और पब्लिक का सहभाग लेने की दृष्टि से हमने एक ड्रग मुक्त प्रभाग, ये एक नया उपक्रम हमने शुरू किया है। जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलके पब्लिक की सपोर्ट के साथ हम ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध, ड्रग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो एडिक्टेड लोग हैं, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़े पैमाने पे मुहिम चला रहे हैं। अभी तक हम ज्यादा कंसेंट्रेट सप्लाई चेन पे करते थे, अब हम कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां उनको काउंसलिंग या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेज रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो युवक है उनको एक उनको अवेयरनेस क्रिएट करना और थोड़ी सी उनके मन में एक डिटरेंस भी पैदा होना कि इस प्रकार के विषय पे जीरो टॉलरेंस है। साथ साथ कॉलेजेस और स्कूल्स के जो परिसर में जो टोबैको सेलिंग सेंटर्स हैं, पान के दुकान हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पे टारगेट की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुणे शहर से हम ड्रग्स को टोटली बाहर कर पाएंगे।
3: नशीले पदार्थों के खिलाफ इस कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस अभियान में समाज की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए पुणे से मैं माधवी कुलकर्णी।
5: Heading to Panaji now, the Goa Konkani Academy has launched a landmark project to ensure the architects of the Konkani language are never forgotten. A report.
6: The Goa Konkani Academy has officially announced the commencement of Konkani Bhasha Sahitya Silpakar course, an ambitious encyclopedia designed to chronicle the lives of those who shaped the region's linguistic and cultural identity. This major initiative seeks to document a wide array of contributors ranging from freedom fighters and poets to theatrists, researchers and digital media influencers. By creating this official record, the Academy aims to introduce future generations to activists and artists who championed the Konkani movement across various dialects and medium. The Academy is now inviting

0: Politics of the Muslim League. In 1940, when the All India Azad Conference was convened in Delhi, Allah Bakhsh was chosen to preside over the session. When the Quit India movement was launched, he rented a big bungalow at Karachi to help Satyagrahis and also visited the Karachi jail to help them. In September 1942, when the Quit India movement was at its peak, he resigned from the Defence Council and relinquished the titles given by the British in protest.
1: Unfortunately, the brave nationalist Allah Bakhsh Soomro was assassinated on the 14th of May 1943 by one of the Muslim League extremists while he was travelling to his hometown of Shikarpur.
2: और आज प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि है। उन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वो ही रेडियो में लेकर आए। सुमित्रानंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना तंत्र विकसित किया, जो आज भी नवीन प्रयोगों के साथ अग्रसर है। और आज ही महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान और भारतीय धरोहर के मनीषी आचार्य रघुवीर की पुण्यतिथि है। वे महान कोशकार, शब्दशास्त्री और भारतीय संस्कृति के उन्नायक रहे। एक ओर आचार्य रघुवीर ने कोश की रचना कर राष्ट्रभाषा हिंदी का शब्द भंडार संपन्न किया, तो दूसरी ओर विश्व में, विशेषतः एशिया में फैली हुई भारतीय संस्कृति की खोज कर उसका संग्रह और संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया।
3: Today we are remembering the King of Blues, B.B. King, the blues guitarist, singer, songwriter and record producer. He introduced a sophisticated picking style of actually soloing based on fluid string bending, shimmering vibrato, staccato picking that influenced many later electric guitar blues.

0: So he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1987 and is one of the most influential blues musicians in history, earning the name, which I started with, the King of Blues.
1: प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मृणाल सेन की आज जयंती है। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली, उड़िया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। मृणाल सेन ने फिल्मों में निर्देशन की शुरुआत 1956 में बंगाली फिल्म रात भूरे से की। 1958 में उनकी दूसरी फिल्म नील आकाशेर नीचे आई। इस महत्वाकांक्षी फिल्म में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चीनियों के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाया और उनकी फिल्म 22 श्रावण 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल पर आधारित थी। मृणाल सेन हिंदी फिल्मों में भी समान रूप से सक्रिय रहे। इनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। आइए सुनते हैं

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जागृति और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामुला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए रखने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, called on Prime Minister Narendra Modi. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
3: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen cooperation.
2: Dr. S. Jaishankar said there is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism. The government has said that effective steps have been taken to ensure the availability of adequate crude oil, LPG and natural gas across the country. Addressing the interministerial briefing on recent developments in West Asia, New Delhi, Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that domestic LPG supply across the country remains smooth and no dryout has been reported at any distributorship. Secretary of Ports, Shipping and Waterways Mukesh Mangal said two vessels carrying more than 90,000 metric tons of LPG with over 20 crew members crossed the Strait of Hormuz last night and expected to arrive on the 16th of this month. Mr. Mangal said that the Indian trading vessel MSV Haji Ali, which was on a voyage from Somalia to Sharjah in the UAE, encountered an incident in Omani waters in the early hours of yesterday.
4: An Indian dhow, a mechanized sailing vessel that is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba Port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman, Indian mission officials and relevant maritime agencies.
2: Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheesan as the new Chief Minister of Kerala. The announcement was made by Congress leaders Ajay Makan, Mukul Wasnik and Deepa Das Munshi during a press conference in New Delhi. The Election Commission today announced Special Intensive Revisions SIR Phase 3 will be conducted in phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation, despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. It said Mr. Trump had a good meeting with President Xi. Benchmark domestic equity indices

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। शो है गाते गुनगुनाते, जिसमें हम बात करते हैं 80 और 90 के दशक की फिल्मों के बारे में। जी, फिल्म थी कुली, 1983 में बनी थी ये फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन और रति अग्निहोत्री मेन लीड रोल में थे। फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है नीले फूले का भी था। ये अमिताभ के साथ उनकी इकलौती फिल्म थी। फिल्म में अमरीश पुरी का भी छोटा सा रोल था, जो कि फ्लैशबैक में था। कुली फिल्म की शूटिंग मुंबई के रेलवे स्टेशन पर करना इम्पॉसिबल था, इसलिए इसकी शूटिंग जो है बेंगलोर सिटी स्टेशन पर की गई थी। इसके अलावा भी फिल्म का बहुत सा हिस्सा जो है बेंगलोर में ही शूट किया गया था। मनमोहन देसाई ने बताया कि हम बहुत से आर्टिस्ट को मुंबई से बेंगलोर लेकर गए, उन्होंने कुली के कॉस्ट्यूम्स पहनाए गए और कहा कि ये यहाँ ऑब्जर्व करें, कुलियों के बैठने उठने का तरीका, सामान उठाने का तरीका, बीड़ी पीने का भी जो तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, वो उनको भी ऑब्जर्व करें। और उन कलाकारों ने फिल्म में ऐसा ही किया और किसी को भी पता नहीं चला कि ये जो कलाकार हैं वो असली हैं या नकली।

एक ऐसी फिल्म जिसने तीन तीन नेशनल अवार्ड्स जीते। फिल्म थी उमराव जान। 1905 में लिखे मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव अदा पर बेस्ड थी और इस फिल्म की कहानी लखनऊ की एक शायरा उमराव जान अदा की थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था मुजफ्फर अली ने। जब उन्होंने इस फिल्म में रेखा जी को साइन करने का सोचा तो उन्हें काफी क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा, क्योंकि रेखा जो है कमर्शियल फिल्मों की हीरोइन थी, साउथ से आई थी और इस फिल्म में उन्हें उर्दू बोलनी थी, वो भी खालिस उर्दू। खैर किसी भी बात पर उन्होंने अपनी रजामंदी ना जताते हुए

किसी की बात ना सुनते हुए मुजफ्फर अली ने रेखा जी को ही साइन किया और रेखा जी ने भी मुजफ्फर अली के भरोसे को कायम रखा और इस फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म के लिए बाकायदा उन्होंने उर्दू सीखी, बेमिसाल अदाकारी की और अब बारी थी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को लेने की। उसके लिए मुजफ्फर अली ने खयाम साहब को साइन किया, पर खुद खयाम साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे इस बात से कि इस फिल्म के गीतों का मुकाबला जो है कुछ साल पहले बनी फिल्म पाकीज़ा से किया जाएगा। फिल्म पाकीज़ा में लता जी ने अपनी आवाज़ दी थी तो इस फिल्म के लिए खयाम साहब ने आशा जी के ज़रिए सारे गीत रिकॉर्ड करवाने का फ़ैसला किया। खयाम साहब का म्यूज़िक और आशा जी की आवाज़ ने करिश्मा किया और रातों रात फिल्म के गीत पूरे हिंदुस्तान की जबान पर थे। इस फिल्म के लिए आशा जी को बेस्ट फीमेल सिंगर और खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। रेखा जी को भी बेस्ट एक्ट्रेस और मुजफ्फर अली को भी फिल्म फेयर के बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, today called on Prime Minister Narendra Modi. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting underway in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov briefed the Prime Minister on progress in bilateral cooperation since the meeting with the President Vladimir Putin and Mr. Modi during the 23rd India-Russia annual summit in December. The two leaders also discussed regional and global issues, including the situations in Ukraine and West Asia. Prime Minister Modi reiterated India's position that dialogue and diplomacy remain the best way forward and asked Mr. Lavrov to convey his greetings to President Putin. Earlier in his opening remarks, External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
3: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
2: Dr. S. Jayashankar said recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Jharkhand, Odisha, Maharashtra and all northeastern states except Assam. 3 UTs will also be covered in this phase, NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. With this, the SIR of the electoral rolls will cover the entire country in phase 3 except Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satishan as the new Chief Minister of Kerala. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. In Tamil Nadu, AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy today met the State Governor Vishwanath Arlekar and gave him a petition regarding the faction of AIADMK MLAs led by SP Velumani. The former Chief Minister appealed to the Governor to take up the issue with Speaker J.C.D. Prabhakar. The issue is that 25 AIADMK MLAs in the faction led by SP Velumani voted for the TVK government, not heeding the whip issued by O.S. Manian to vote against the TVK government. Delhi government will start the Mera Bharat, Mera Yogdan campaign from tomorrow in line with Prime Minister's appeal. Addressing the media in Delhi, Secretariat Chief Minister Rekha Gupta said, under the campaign, all Delhi government offices except essential services will operate on a work from home for 2 days in a week. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Benchmark domestic equity indices surged over 1% today, led by broad-based buying across most sectors. The Sensex gained 790 points to close at 75,399. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सदाबहार गीतों का। सदाबहार गीतों में आपके साथ है विभा। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान।

बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: और अब सुनिए संस्कृत में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ श्रोताओं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: धन्यवाद प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: Benchmark domestic stock market indices surge. Sensex jumps nearly 800 points. Nifty settles at 23,690. India's wholesale inflation soars to 8.3% in April this year. And US and China agree on keeping the Strait of Hormuz open for free flow of energy.
1: घरेलू शेयर सूचक अंकों में बढ़त, सेंसेक्स लगभग 800 अंक बढ़ा, निफ्टी 23,690 पर बंद हुआ। इस वर्ष अप्रैल माह में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर में 8.3% की वृद्धि हुई और अमेरिका तथा चीन वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के लिए हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खुला रखने पर सहमत हुए।

0: And before we take our main stories in detail, let's have a look at the disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, एक नज़र बाजार की हलचल पर। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। लगभग सभी क्षेत्रों में आज खरीदारी हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 790 अंकों की बढ़त के साथ 75,399 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 277 अंक उछलकर 23,690 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार की बात करें तो मिड कैप 100 में लगभग 1% से अधिक की तेजी देखी गई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक नकारात्मक रुझानों के साथ लगभग सपाट बंद हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices surged over 1% today, led by broad-based buying across most sectors. Sensex gained 790 points to close at 75,399, while Nifty added 277 points to settle at 23,690. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 jumped 1.1%, while the small-cap 100 closed flat with a negative bias.
1: इससे पहले बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की थी और दोपहर कारोबार में मुनाफा वसूली के कारण और तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में भारतीय एयरटेल के शेयर 5.3% से अधिक, इटर्नल 3.3% से अधिक और HDFC बैंक के शेयर में लगभग 2.7% का उछाल आया। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इन्फोसिस लगभग 2.5%, टेक महिंद्रा लगभग 2.2% और HCL टेक के शेयर 1.5% से अधिक लुढ़के।
0: Earlier, the markets opened on a positive note with a bullish momentum strengthening during the afternoon session amid value buying support. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 21 out of 25 sectors edged upward. In the top gainers, telecommunications rose nearly 2.9%, healthcare climbed 2.1% and metals added 2%. Among the top losers, IT shed over 1.8%, focused IT lost nearly 1.8% and energy dropped 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,107 companies advanced, 2,076 declined and 190 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 95.76 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.56 पर चल रहा था।

0: नीत, आज हमने बाजार में उछाल देखा है और कई दिनों से उतार चढ़ाव भरा माहौल हम देख पा रहे हैं, जब से युद्ध जो है अपने चरम पर नज़र आ रहा है और बहुत तरीके के सेक्टर्स में अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं, सुर्खियां अलग अलग चीज़ें इंडिकेट करती हैं, जो हमारे निवेशक हैं और जो श्रोता हैं दोनों के मन में अलग अलग तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे में अगर हम आज के बाज़ार को देखें, आज की हलचल को देखें, तो वो रुझान आपके लिहाज से किस तरफ है?
1: तो प्राची, आपने सही कहा कि अभी पिछले कुछ समय से, पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें, जब से युद्ध खाड़ी में युद्ध शुरू हुआ है, तब से बहुत वोलेटाइल मार्केट्स रही हैं। शुरुआती दौर में मार्च में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी थी मार्केट्स में, अप्रैल के महीने में काफ़ी रिबाउंड आया, काफ़ी रिकवर हुआ मार्केट्स, पर्टिकुलरली जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं वहाँ पर हमने अच्छी बढ़त देखी थी, वहाँ पर काफ़ी गेंस रहे थे निवेशकों के लिए। मुख्य बात हम ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो विदेशी निवेशक है, वो भारतीय बाजारों में काफी बिकवाली कर रहे हैं। और उसका भी मुख्य कारण है कि जो रुपए डॉलर में, जो रुपए की वीकनेस है, करीब करीब 95 से 96 रुपया टू द डॉलर, यूएस डॉलर वहां तक स्तर तक ये रुपया के एक्सचेंज रेट जो है गिरा है, तो उसको चलते वो फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी सेलिंग कर रहे हैं और वो प्रेशर हम देख रहे हैं इंडेक्स के ऊपर भी। पिछले, यदि मैं इस महीने की बात करूं, मई के महीना भी करीब आधा महीना ही हुआ है, 14-13 मुश्किल से 10-12 दिन की ट्रेडिंग हुई है, इसमें भी करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का नेट सेलिंग एफआईएस की हो चुकी है। हालांकि आज का दिन अच्छा था, आज पहली बार पूरे सप्ताह महीने को देखें तो आज थोड़ी मामूली बाइंग रही है एफआईएस की। तो कुल मिलाकर ये जो प्रेशर्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के, उसकी वजह से मार्केट ड्रैग कर रही है। दूसरा मुख्य कारण रहा है कि जो आईटी सेक्टर, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज हैं भारत की, अब बहुत बड़े पैमाने पे निर्यात करती है। इनफैक्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, करीब $300 बिलियन से ज्यादा का हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हर साल करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी अर्थव्यवस्था का, वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं, वहां पर कंपनियों में हम बिकवाली देख रहे हैं, तो इससे थोड़ी नर्वसनेस रही है मार्केट्स में। कुल मिलाकर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कहूंगा मिला जुला रुख है। कुछ सेक्टर्स, मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स के नंबर्स आए हैं हमारे सामने, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 25%
0: पिछले कुछ दिनों काफी खरीदारी
1: हुई। तो देखिए, तो मिला जुला रुख है, कुछ सेक्टर्स में हम परेशानियां महसूस कर रहे हैं और ये परेशानियां हमारी बनाई हुई नहीं है, कुछ हद तक इम्पोर्टेड है, क्योंकि हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, वो जो प्रेशर है हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। तो मिला जुला रुख है, सो फार वी हैव डन वेल, लेकिन वी नीड टू बी कॉशियस, हमें सजग रहना चाहिए कि आगे प्रेशर्स के लिए तैयार रहे हम।
0: पुनीत, क्योंकि आपने क्षेत्र विशेष की बात की है, कुछ प्रॉमिसिंग सेक्टर्स के बारे में भी आपने बताया, उसमें आपने डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट आईटी की आपने बात की, तो इस हिसाब से आपके लिहाज से अभी के समय में, बल्कि मैं आज के समय को प्रतिबद्ध करके मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या देखते हैं निवेशकों के लिहाज से, अभी कहाँ उन्हें अपना पैसा लगाना चाहिए?
1: प्राची, काफी मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि अगर आप वैल्यू बाइंग की नजर से देखें तो आईटी क्षेत्र जो काफी बीटिंग ले रहा है और रोज हम देखते हैं, दिन प्रतिदिन वहां पर सेलिंग आती है, शेयर्स गिरते हैं और एफआईआईज ज्यादातर वहां सेलिंग कर रही हैं, वहां मुझे लगता है वैल्यू है, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं वो आने वाले, उन काफी कैश रिच कंपनी है, कोई भी डेट उनके ऊपर नहीं है और बड़े पैमाने पर इनमें से कुछ बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट तो 60,000-70,000 करोड़ रुपए साल का वो मुनाफा कमाती है, तो ये 5 से 6 लाख इंप्लॉयज वहां काम करते हैं। तो देखिए, कुछ हिट वहां हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद, 1 साल चाहे 2 साल, जब ये स्टेबलाइज करेंगी तो वहां से हम एक बड़ा एक बदलाव देखेंगे। और एआई को लेकर ये सब, ये जो जितना भी सवाल उठ रहे हैं आईटी सेक्टर क्षेत्र को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि क्या इंपैक्ट होगा उसको लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रांजिटरी फेज है। तो आईटी सेक्टर हालांकि वो गिरा हुआ है, पर फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि वहां धीरे धीरे निवेशकों को जरूर, वहां वैल्यू बाइंग बहुत है, वो कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र जो अच्छा है वो ऑटोमोबाइल्स, हम अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं, मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स, वो भी अच्छे प्रॉमिसिंग sectors.
2: Puneet, the concerns earlier was that the war would continue between Iran and the US, but somehow that has not taken off as yet. We have foreign ministers from Iran and Russia, in fact, visiting India under the BRICS umbrella all looking to ensure geopolitics does not impact oil prices any further. But fundamentally, our markets, as you mentioned earlier, 1,064 companies had declared the results out of 5,000. And today itself, 148 companies had declared the results, all favorable. And so far, we have seen that the revenue year on year is almost 11%. Net profitability is almost 19%. So fundamentally, the companies listed on the stock exchanges have shown high revenue, high net profitability, and you have all the bellwether stocks really coming out with strong performances. Do you feel that this rebound in the market where DIIs and FIIs and net buyers, this will continue tomorrow and day after as well? Because tomorrow 146 companies are going to declare the results. Day after, 48 companies are going to declare the result. Do you see the bullish tone in the market returning?
1: So, Arjun, you have raised an interesting point, because there seems to be some kind of a disconnect between what numbers we are getting for Q4, which was March ending quarter, and what is happening in the market. So markets appear to be very nervous. The quarterly numbers that we are getting for corporates appear to be very good. The reason, of course, is the fact that these numbers pertain to the January to March quarter, and the impact of the Gulf War was felt somewhat only in the month of March, in fact in the later half of March, and probably the current quarter, which is April to June quarter, when the numbers are announced in subsequently in July, August, then maybe we'll see the real impact of this war. So ironically, I'll tell you, there's one oil PSU company which is currently losing a lot of money on petrol diesel. They have declared a huge profit for the last quarter, because of course they were making money in January, February, and then the losses really piled up March onwards. So clearly these numbers that we are getting are very good, positive. They show that we are in good space, but these numbers do not reflect the full impact of the war as yet. So my guess is market is looking ahead. Market is saying that okay, these numbers are good, but probably going forward we are going to see the numbers decline, and that's why we see this kind of selling in the markets. As far as you mentioned the fact that do FIIs and DIIs, will they continue to pour money into markets? See, domestic investors, interestingly, the data we got for the month of April for mutual funds showed an inflow of approximately 40,000 crores. In spite of everything, all kinds of scares were there, all kind of volatility was there, and yet 40,000 crores were invested each in the month of March and in April by domestic investors in mutual funds. So that is the kind of inflows we have from domestic investors, and I think this will continue. FIIs, of course, are somewhat fickle creatures. They have been selling very heavily in the markets so far. My guess is that they will have a mixed bag. They probably will keep selling more than buying in the next few months, but FIIs, I think they will continue to sell for some more time.
2: So that's your technical analysis, but today the big surprise has been telecommunications that went up by 3%. I mean, we know that there are debt-ridden companies as well, where clearly a great deal of equity investment has already been made, and the other being Nifty Bank has shown a bullish tone once again. It's gone up by 673 points, but there is also the underlying fear of inflation creeping in, which would impact the central bank's decision on what the repo rate is going to be when they have the next meeting on June 5. And yet we are seeing the bullish tone in the banking sector and telecoms coming out with strong profitable results, including revenue as well. Shed us some light on both these sectors.
1: So as you know, the telecom, we have three major companies operating, and two of them are dominant companies. One is not that big, and in fact only two are listed. So one of these companies, of course, came out with numbers and market reacted very positively, and we saw a jump in the price of that company, which is the dominant player, and therefore the index went up. Banking was really the surprise package today, because what happened was that in the morning when markets opened, we saw there was selling in banking. In fact, the banking index went into negative territory early in the morning, and then it sharply turned around. And then couple of banking stocks which have been taking it on the chin, private sector banks, they suddenly saw very impressive value-based buying, and the banking index went up.
2: Short covering,
1: I would say there was a lot of value buying also by mutual funds, by domestic investors who have a lot of faith in these private sector banks. So my guess is that value buying by domestic investors was really behind this jump in the index. See, as far as the next RBI MPC meeting is concerned, there are fears that because of higher inflation, RBI may try to raise rates. My personal opinion is that RBI will not raise rates in a hurry. They will probably wait for a few more, maybe months, to see whether these higher rates are there to stay, and only then we might see higher rates. So my guess is market kind of is, you know, struggling with these different scenarios, and probably just took a positive view today.
2: Well, let's have a look at the other big news today, which is on inflation. India's wholesale price index, WPI based inflation, surged to a 42-month high of 8.3% in April on an annual basis, up from 3.88% in March this year. On a month-on-month basis, the WPI rose to 3.86% in April as compared with 1.52% in March, pointing to a build-up in input cost pressures. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the sharp rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils, crude petroleum and natural gas, basic metals, manufactured products and non-food articles. Among the major categories, the annual inflation rate in the fuel and power segment soared to 24.71% in April, sharply up from 1.05% in March. Inflation in primary articles also rose significantly to 9.17% from 6.36%. Manufactured products, which carried the highest weight in the WPI basket, recorded an inflation rate of 4.62% in April, compared with 3.39% in March. Meanwhile, the WPI food index, comprising food articles and food products, edged up to 2.31% from 1.85%. Puneet, the wholesale price index, to what extent do you see producers being impacted and ultimately consumers and the CPI numbers? Because imported inflation is very high. The government is looking at all possible options to ensure that procurement of oil and gas is at the lowest possible price without the risk of war, you know, impacting consumption in the country. How is that going to be mitigated?
1: So, Arjun, like you mentioned, bulk of this jump of 8% in inflation, in WPI inflation, actually has come from increase in crude oil prices and petrol and diesel, you know, commercial energy prices. And unfortunately, there's little we can do about it except for trying to reduce consumption and therefore imports of these items. And also the flip side is that we will see much of this higher inflation seep into CPI, consumer inflation, over the next few months. So WPI going up is producers' costs, and therefore eventually, of course, the consumer costs will also start going up. We cannot wish it away at this stage. I think government, of course, is trying to take all kinds of measures. We have tried to conserve foreign exchange reserves so that inflation, you know, prices don't go up because of rupee deflation, going down. And therefore, I think there are limited choices before the government. We have to, you know, tackle this situation. Honestly, I think it's very tough, you know, for policymakers to deal with this situation.
0: आगे बढ़ते हैं. सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक खांड, सफ़ेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार निर्यात नीति को निषेध कर दिया गया है. ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को सीएक्सएल तथा टीक्यूआर कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा. निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है. और अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. श्रोताओं, आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.5% से अधिक, जापान का निकेई 1% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.2% लुढ़का. वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.7% से अधिक बढ़ा और हांगकांग का हैंगसैंग सपाट बंद हुआ. यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें तो यहां तेजी देखी गई. जर्मनी का डैक्स 1% से अधिक, फ्रांस का कैक लगभग 1% और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग आधे से अधिक कारोबार करता नजर आया.
2: Moving on to the US stock market, the benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq composite closed at record highs yesterday. supported by gains in artificial intelligence related stocks. Nasdaq Composite surged 1.2% to 26,402, and the S&P 500 climbed 0.6% to 7,444. However,

0: offered to supply LNG, liquefied gas, to India, but it's sanctioned. How do you see India countering this? Have they accepted it? Will they refuse it? Because oil and gas is a big issue in India.
1: So for India, Russian oil and gas has been very important, because they have really on price front as well as availability, because it avoids this entire conflict zone of Gulf, and we get supplies from Russia which are very unhindered. So and India, and Russia is of course a very important business partner for India also. So my guess is that going forward we will see a lot more imports from Russia of energy. Right now there are sanctions and issues about US restricting that trade, but I don't see in future how Russia will not be a major partner for us, and therefore I think we will going forward. Plus I also see unraveling of this OPEC plus grouping, and therefore the prices eventually will come down substantially for us.
0: And how is India managing to ensure that the retail price of fuel is manageable, including petrol and diesel?
1: It's a very difficult question. Of course, the oil marketing companies are making huge losses right now, because from the cost of production to what they're selling. But government is so far has been able to take a lot of this pressure itself. But I think if this sustains, then you might see some price increases coming in.
0: And how do you see the austerity measures announced impacting?
1: I think they're really taking effect. And we see a lot of effect on the ground. Government's cutting down its own expenses and reducing consumption. So I think that is really taking effect very well.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading marginally down at 1,62,840 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.4% lower at 2,96,800 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona 0.2% se adhik badhkar 1,62,567 rupees per 10 gram par tha, aur July anubandh wali chandi 1.2% ghatkar 2,96,688 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, सोने और चांदी के दाम, इन पर आपकी एक टिप्पणी।
1: बिल्कुल प्राची, कल जो गुगली मैं कहूंगा ओवरनाइट जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी और एकदम हमने बहुत शार्प जंप देखा गोल्ड और चांदी के दामों में। मुझे लगता है कि ये कुछ समय तक बाजार को काफी उथल पुथल करता रहेगा,
2: गले में आ गया।
1: देखिए कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। जिनके पास ऑलरेडी सोना है, कि सेविंग्स हमारी बहुत ज्यादा सोने में या चांदी के रूप में है, वो उन लोगों को बहुत फायदा हुआ, उनको लगता है दाम बहुत अच्छे बढ़ गए। और जो फ्रेश कंजम्पशन है उसको लेकर काफी चिंताएं भी है, पर मुझे लगता है एक अच्छा कदम है शॉर्ट टर्म में, और आने वाले समय में इसके अच्छे फायदे होंगे। पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है जो हाउस होल्ड में जो गोल्ड है, आने वाले समय में उसकी मोनेटाइजेशन होने की भी संभावना है, जो लोग मोनेटाइज कर पाएंगे और उसको कुछ उससे फायदा उठा पाएंगे।
2: यानी आप उसके सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं?
1: सर्कुलेशन, और डेफिनेटली काफी हाउस होल्ड में सेविंग्स हैं गोल्ड की शक्ल में, जो सरकार टैप कर सकती है, और हम उससे में फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमें उससे कंजम्पशन में भी फायदा होगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत कार्यक्रम में आने और अर्जुन और मेरे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्राची।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices surge. Sensex jumps nearly 800 points. Nifty settles at 23,690. India's wholesale inflation soars to 8.3% in April this year. And US and China agree on keeping the Strait of Hormuz open for the free flow of energy. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन

0: में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और मार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजा जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज एमएसवी हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: An Indian डो
2: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
1: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में AIADMK के महासचिव एडापड्डी के पलनीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, called on Prime Minister Narendra Modi. The meeting took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting underway in New Delhi. Earlier, in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
4: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
3: Dr. S. Jaishankar said there is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism. The government has said that effective steps have been taken to ensure the availability of adequate crude oil, LPG and natural gas across the country. Addressing the interministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today, Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that domestic LPG supply across the country remains smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Secretary of Ports, Shipping and Waterways Mukesh Mangal said that two vessels carrying more than 90,000 metric tons of LPG with over 20 crew members crossed the Strait of Hormuz last night and are expected to arrive on the 16th of this month. Mr. Mangal said that the Indian trading vessel MSV Haji Ali, which was on a voyage from Somalia to Sharjah in the UAE, had encountered an incident in Omani waters in the early hours of yesterday.
1: An Indian dhow, a mechanized sailing vessel that is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Diba Port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman, Indian mission officials and relevant maritime agencies.
3: The Election Commission today announced Special Intensive Revision Phase 3, which will be conducted in phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Jharkhand, Odisha, Maharashtra and all northeastern states except Assam. 3 union territories will also be covered in this phase: NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheeshan as the new Chief Minister of Keralam. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. In Tamil Nadu, AIADMK General Secretary Eddapadi Palaniswamy today met the state governor Vishwanath Arlekar and gave him a petition regarding the faction of AIADMK MLAs led by S.P. Velumani. The former chief minister appealed to the governor to take up the issue with Speaker J.C.D. Prabhakar. Delhi government will start the Mera Bharat Mera Yogdan campaign from tomorrow in line with the Prime Minister's appeal. Addressing the media at the Delhi Secretariat, Chief Minister Rekha Gupta said that under the campaign, all Delhi government offices except essential services will operate on a work from home for 2 days in a week. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. And that is the end of this news bulletin.

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।

0: जी, शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था, जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
3: एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू strengthening cooperation within the BRICS framework. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
1: गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के, उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे 4 महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आंकते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही, मुझे लगता है, ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा। अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है। पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर, जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को और खास तौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है जो आवागमन हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे हमले उसके जवाब में, तो उसमें यह भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी मेंबर के लिए उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था। तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल पुथल चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से, और उसमें अगर हम देखते हैं कि

0: अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं खास तौर से, चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है, या यूएई है, या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात होता है।
1: जी
0: और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है। तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है। तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है उसके अंदर मुझे लगता है कि ब्रिक्स देश जो है उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है तो उसके बारे में काफी जो है वो कोई पहल ले सकते हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की, जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलरिटी की, कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है। उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिक्स की, उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में, वहां पे उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी, चीन भी एक ब्रिक्स का देश है, उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां के एम्बेसडर कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स के देश जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है
1: जी
0: और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर, उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं, उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है, उससे काफी जो है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं। बहुत से देश और हैं जो अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है और कल भी इसके बारे में जो है BRICS 20 के बारे में एक सम्मेलन होगा,
1: जी
0: उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश, वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी, वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है और पूरा जो मल्टीलेटरल सिस्टम है, जो अभी क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और बहुत सी संस्थाएं हैं, WTO है, WHO है, तो
1: जी
0: उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
1: गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा, तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं?
0: जी, भारत ने तो पहले से कहा है और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए।
1: जी
0: और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है,
1: जी
0: वो ग्लोबल साउथ के देश है वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है, ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनैतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर, एक मत होकर कुछ बात करते हैं तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से क्योंकि क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील ब्राजील की बात कर लीजिए और बाकी जो देश हैं इजिप्ट रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की

0: अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा, और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है
1: जी
0: वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है। तो उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है, और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भू राजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, फिर जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं। तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं देशों के अंदर, जैसा
1: जी
0: हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी, एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो,
1: जी
0: ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है, और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे, लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को। तो
1: जी
0: इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे। और क्योंकि इसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है। और उससे यह है कि उनसे, क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, और जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे, तो बाकी सारी जो और संस्थाएं भी हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे WTO वगैरह हो, तो
1: जी
0: सब जगह पे ब्रिक्स के देश, क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहाँ पे, अगर इन सब बातों के बारे में, खासतौर से जो इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस के सुधार के बारे में, कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा, और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
1: गुलशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है।
0: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज सांझ ढले में। आज आपके साथ है विभान। नमस्कार। शुरुआत करते हैं साल 1949 की फिल्म बरसात के गीत से, जिसमें संगीत दिया शंकर जयकिशन की जोड़ी ने, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और आवाज लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

साझ ढले सुन रहे हैं आप विभाग के साथ। और अब सुनते हैं साल 1949 की फिल्म अंदाज से शमशाद बेगम और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

सांच ढले का अगला गीत साल 1951 की क्राइम ड्रामा फिल्म आवारा से, जिसमें लीड रोल में दिखे पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, नरगिस और लीला चिटनिस। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया और गीत लिखे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। तो इसी फिल्म से लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: सांझ डले में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस चरण के अंतर्गत दिल्ली में 7 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 16.99 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में जोरबाग से मीठापुर तक कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। ये कॉरिडोर जसोला, अपोलो, लाजपत नगर, NSIC ओखला और मीठापुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे सेंट्रल तथा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बीच यात्रा और आसान होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से प्रमुख सरकारी कार्यालयों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 35 यात्रियों की क्षमता वाली 2 हाइड्रोजन फ्यूल बसें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें GPS ट्रैकिंग और CCTV की सुविधाएं होंगी। ये बस सेवा कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी। हर 30 मिनट में चलने वाली ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, इंडिया गेट और नेशनल स्टेडियम सहित कई प्रमुख स्थानों को कवर करेंगी। DMRC के अनुसार ये पहल स्वच्छ ऊर्जा और हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से जोड़ने वाला 300 मीटर लंबा नया फुटओवर ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब यात्री रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन के बीच सुगम और सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। इस फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर, लिफ्ट, मूविंग वॉक, CCTV और पर्याप्त रोशनी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है। कल से शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के ईंधन, आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये अभियान प्रधानमंत्री की 7 अपीलों से प्रेरित है।
3: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की नीति अपनाए। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
4: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे।
3: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग और बिजली बचत पर भी विशेष बल दिया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ चल रहे संवाद कार्यक्रम को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर लिया गया है। श्री सूद ने कहा कि तकनीक आधारित प्रशासन और स्कूल प्रमुखों के साथ सीधा संवाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। राजधानी के सभी 28 शिक्षा जोन में कुल 11 ऑनलाइन संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। अगला ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम कल आयोजित किया जाना है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज सतत विकास, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि NDMC क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। श्री चहल ने बताया कि कल से NDMC कर्मचारियों के लिए 4 आवासीय क्षेत्रों से शटल बस सेवा शुरू होगी, जिसे सोमवार से 14 अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग पर 50% छूट दी जाएगी। महापौर प्रवेश वाही ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए लोगों से ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और यातायात कम करने के लिए नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने की अपील की है। इसी कड़ी में श्री वाही आज मेट्रो और ई रिक्शा से सफर कर अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज डॉ बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संधू ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जो एक शैक्षणिक यात्रा के समापन और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान, मानविकी और जन सरोकारों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये उपलब्धि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा, शोध, स्टार्टअप और तकनीक के माध्यम से विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। श्रीमती गुप्ता ने छात्रों से करुणामय बने रहने का अनुरोध किया।
5: 14वां दीक्षांत समारोह आज हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ संपन्न हो, लगभग 1000 स्टूडेंट्स को आज डिग्री दी जाने वाली। 19 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई हमारी डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आज 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिक्षा दे रही है, एनुअली यहाँ से पढ़ा रही है। इतना समझ लीजिए कि सक्सेसफुल बनिए पर सेंसिटिव भी रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए पर कम्पैशनेट भी रहिए।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज के समय में तकनीक और वैश्विक चुनौतियों के बीच युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि निरंतर सीखने, नवाचार तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
6: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मदर डेरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। संशोधित दरें

3 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार गाजियाबाद और हापुड़ में सक्रिय ये गिरोह स्कूटी की मदद से इन साइकोट्रॉपिक दवाओं की सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना वैध प्रेस्क्रिप्शन और दस्तावेजों के इन दवाओं की अवैध सप्लाई और वितरण कर रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं संपत्ति ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कई व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी बरामद की है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के रानीबाग इलाके में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में रानीबाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। बाहरी जिले के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने देश भर में पिछले 24 घंटों में 14 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि कल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को आज दिल्ली के सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इस अभियान में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। राजधानी में आज दिन भर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से भेंट की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन,

0: वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज MSY हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया।
1: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल है। तमिलनाडु में AIADMK के महासचिव एडप्पा डी के पलानी स्वामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। इससे पहले SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK गुट के 25 विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद ना करने का निर्णय लिया गया है। धर्मशाला में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamalu and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, called on Prime Minister Narendra Modi. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting underway in New Delhi. Earlier, in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
4: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that

स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त है मधुरिमा का और साथ है आपके विभा। नमस्कार, मधुरिमा में आज हम आपको गीत सुनवाएंगे विभिन्न रागों पर आधारित, जो स्वर्णिम दौर के साथ साथ आज भी उतने ही लोकप्रिय और पसंद किए जाते हैं जितना कि उस समय किए जाते थे। तो जल्दी से सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत, जिसे हमने लिया है साल 1969 की फिल्म तलाश से। राग बरवा पर आधारित इस गीत में सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया है और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, आवाज लता दी की।

और अब बात राग कामोद की। राग कामोद एक बहुत ही मधुर और प्रचलित राग है। इस राग में मल्हार रंग, हमी रंग और कल्याण अंग की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, साथ ही केदार और छायानट की झलक भी दिखाई देती है। और ऐसा माना जाता है कि राग कामोद की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है और राग कामोद पर ही आधारित है मधुरिमा का हमारा अगला गीत, जो कि एक गजल है और संगीत प्रेमी की पसंद है। संगीतकार कुलदीप सिंह के धुनों से सजी इस गजल को लफ्जों का जामा पहनाया है जावेद अख्तर साहब ने। आवाज है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

अपनी सी, संघर्षों के कुछ कस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभ

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभाग के साथ। और अब आज का हमारा आखिरी गीत है राग झिंझोटी पर आधारित साल 1970 की फिल्म पगला कहीं का से। शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे शमी कपूर, आशा पारेख, हेलन और प्रेम चोपड़ा। संगीत शंकर जयकिशन का है, गीतकार हैं हसरत जयपुरी, आवाज लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं

और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे स्पोर्ट्स कैन। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते। एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक हासिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चर्चा करते हैं इस पर, लेकिन पहले सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
2: पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने आज दूसरी जीत के साथ शानदार प्रदर्शन जारी रखा। सिंधु ने डेनमार्क की अमाली शुल्च को सिर्फ 28 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। इससे पहले सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को हराया था। सिंधु अब क्वार्टर फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी। दूसरी ओर सात्विक और चिराग ने ब्रायन जेरेमी गुनचिंग और मोहम्मद हाइकल को सीधे गेम में 21-12 और 21-19 से हराया। अब वे जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जोड़ी से भिड़ेंगे। भारतीय जोड़ी ने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के मुंह पुत्रा एरवियन स्या और बगास मौलाना पर जीत दर्ज की थी। वहीं ओपनिंग राउंड में श्रीकांत ने सिंगापुर के लोहकीन यू को हराया था। देविका ने जापान की एन निदाइरा को, जबकि बंसोर ने झांग वेन यू के खिलाफ जीत दर्ज की थी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु बेहतरीन लय में नजर आ रही है। दो सेट में ही, दो गेम में ही लगातार मुकाबले जीत रही है। और बीच में जो एक गैप सा हो गया था 1.5 साल का, जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, गेम से बाहर भी रही थी, अब वही पुरानी पीवी सिंधु जो 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट थी वो हमें दिखाई नजर आ रही है खेलती हुई।
1: देखिए, अभी टूर्नामेंट, अभी जो बोल रहे हैं कि अभी कंपटीशन और मजबूत और टफ होने वाले हैं
0: जी।
1: नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट राउंड का मैच जो है क्वार्टर फाइनल अकाने यामागुची के साथ, वो काफी टक्कर का मैच रहेगा। क्योंकि हालांकि सिंधु का पुराना फॉर्म जो आपने बोला, 2 बार मेडल जीत चुकी हैं, उसका उनका जो लीड है 15-12 का हेड टू हेड लीड है
0: जी,
1: मगर आंकड़े कुछ माने नहीं रखता। क्योंकि देखिए, सिंधु का जैसे आपने कहा कि कम बैक फ्रॉम इंजरी, इंजरी से वापसी में ये अकाने यामागुची अगर थर्ड सेट तक पहुंच गया, थर्ड गेम तक पहुंच गया, ये मैच बहुत टफ होगा। इसी तरह आपको एक्चुअल टेस्ट सिंधु को कल ही मिलेगा जब वो जापानीज के साथ खेलेंगे।
0: और सात्विक चिराग की भी बात करें तो अच्छा खेल किया, प्रदर्शन दिखाया उन्होंने। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं इस टूर्नामेंट पे ऑलरेडी, और किसी भी टूर्नामेंट में जब ये जोड़ी जाती है तो उनसे उम्मीदें रहती ही हैं कि वो जीत के आएंगे।
1: और ये खास करके इस टूर्नामेंट वो टॉप सीड है
0: जी।
1: और देखिए, वो हमेशा कोई भी टूर्नामेंट खेलते हम और जीतने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा भारतीय की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और देखिए कल क्या होता है, मगर एवरी डे इज अ न्यू डे, और हर एक पेयर जो आता है कभी भी उलट फिर हो सकता है। मगर सात्विक और साची जो हम बोलते हैं साची के ऊपर हमारा काफी उम्मीदें हैं
0: जो टॉप सीड है। और 2019 और 2024 में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। चर्चा करते हैं अब बॉक्सिंग पर। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते। और लड़कियों के अंडर 15 वर्ग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर 15 गर्ल्स वर्ग ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। जबकि अंडर 15 लड़कों ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। 33 किलोग्राम वर्ग में अक्षिता ने रजत पदक जीता। 43 किलोग्राम में तन्वी ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं भूमिका ने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लड़कों के अंडर 15 वर्ग में यश कुमार और मोहम्मद यासर ने अब्दुल्ला स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ियों का। और अंडर 15 अभी युवा खिलाड़ी हैं, आगे चलकर उनको और भी मौके मिलेंगे, और ये एक एक्सपोजर जो है काफी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
1: हमेशा देखिए कोई भी जो हमारे सारे बॉक्सर्स जो हैं खास करके जूनियर डिवीजन में भारतवर्ष का हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहा है, खास करके ये जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है और रोहतक में जो हमारा बॉक्सिंग सेंटर है साई का उसमें इनका सारा इनका ट्रेनिंग होता है, ईयर राउंड ट्रेनिंग होता है और यहाँ से बहुत सारे जो बॉक्सर्स है जो खेलो इंडिया एथलीट भी है खास करके उनको सपोर्ट मिलता है और बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ जो साई का तालमेल जो है ये देखने को मिलता है। आप अगर रोहतक सेंटर में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, खास करके 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अगर भारतवर्ष में होगा और ये 2036 लॉस एंजलिस 2036 ओलंपिक्स अगर इंडिया में अगर हो पाएगा तो ये हमारी इधर फ्यूचर जनरेशन ऑलरेडी हम बिल्ड कर रहे हैं, मगर ये सब देखिएगा सब लोअर वेट कैटेगरी में है और लोअर वेट कैटेगरी में हमेशा इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर।
0: जी बात कर लेते हैं भारोत्तोलन पर। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं।

0: वर्ग का स्वर्ण पदक कोरिया के वोन जू री को मिला, जबकि चीन के जियान चेन ने रजत पदक हासिल किया। अजीत चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए। आज भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 174 किलोग्राम और कुल 314 किलोग्राम का वजन उठाया उन्होंने, और गुजरात को जो मेजबानी मिली है उस तरह का प्रदर्शन करके भी खिलाड़ी दिखा रहे हैं।
1: खास करके ये जो चैंपियनशिप हो रहा है इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, और जिस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है गांधीनगर में। ये वेट लिफ्टिंग के ऊपर तो खास नजर सरकार का भी है, मगर ठीक है। ये जो आपने जो अजीत का जो ब्रॉन्ज मेडल बोला है इसका प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया रहा, मगर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म है ये एशियन गेम्स में बरकरार रख पाते कि नहीं, क्योंकि खास करके आप देखिए अगर चाइनीज और कोरियन की जिसकी आपने जिक्र किया उनका जो वेट डिफरेंस है गोल्ड जीता वो काफी ज्यादा है, तो कम से कम 20 किलो का डिफरेंस है, 20 किलो वेट लिफ्टिंग में बहुत माने रखते हैं। मगर ठीक है, आप अप्रिशिएट करना चाहिए कि अजीत का जो प्रदर्शन है और भारतवर्ष में 71 किलोज में जो इस तरह से ब्रॉन्ज मेडल आया है ये काफी बेहतरीन है।
0: बात कर लेते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज फ्रांस के पूर्व खिलाड़ी फेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। सोएज भारतीय दिग्गज पीआर श्रीजेस की जगह लेंगे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 में खत्म हो गया था। खुद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं सोएज, और काफी लंबा करियर रहा है, 15 साल उन्होंने फुटबॉल हॉकी खेला है, और 1995 से लेकर 2010 तक, और कोचिंग भी किया उन्होंने, टोक्यो ओलंपिक में किया है, फिर रियो में किया, पेरिस में किया, तो अच्छा प्रदर्शन रहा और एक एक्सपीरियंस्ड कोच को लेकर आ रहे हैं।
1: जरूर, आप देखिए हॉकी इंडिया जो भी सिलेक्शन करते हैं जो कोचेज आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलियन कोचेज, हमने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कोचेज देखे हैं। ये जो ये फ्रेडरिक सोएज है
0: जी,
1: इनके एक्सपीरियंस का तो कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। और हालांकि श्रीजेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, 5 टूर्नामेंट में 5-5 मेडल मिला है, जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मिला है, मगर उसको शायद इमोशनली हम सोचे तो शायद श्रीजेश के ऊपर हम थोड़ा सोच सकते हैं अरे श्रीजेश क्यों नहीं हुआ, मगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखिएगा तो हमें हमेशा देखिएगा कि जब भी हमारे पास फॉरेन कोचेज आए हैं हमारी जूनियर टीम हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। और ये जो भी डिसीशंस हॉकी इंडिया लेता है साई के साथ, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचा जाता है, खास करके जो 2036 ओलंपिक्स जो हमने बात की है, जैसे बॉक्सिंग में हमने आपको की है, हॉकी में भी सेम रूल और लॉजिक अप्लाई कर रहा है
0: जी। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि उन्होंने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान खशाबा दादा साहेब जाधव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देने का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। सरकार ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय की कोल्हापुर पीठ को बताया कि 31 जुलाई को नामांकन की तारीख खत्म होने से काफी पहले पद्म पुरस्कार 2027 के लिए भी एक नया प्रस्ताव भेजा गया। एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, और हेलसिंकी 1952 में याद आता है, हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में उन्होंने कांस्य पदक भी अपने नाम किया था
1: जी। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मेडलिस्ट, इंडिविजुअल मेडलिस्ट दादा साहेब खशाबा जाधव
0: जी,
1: ये रहे हैं, और शायद एकमात्र जो ओलंपिक मेडलिस्ट है जिसको पद्मा अवार्ड नहीं मिला है। तो ये हमेशा जब भी गवर्नमेंट का अवार्ड आते रहता है ये चर्चा में रहता है, मगर उनको कभी मिला नहीं। तो इस बार कोर्ट के जरिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि शायद सरकार इस बार सुन ले, क्योंकि कोई डिजर्विंग, वो तो पोस्टमसली उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था 2000 साल में, मगर इतना देर तक शायद वेट नहीं करना चाहिए था।
0: बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 14वें ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं कल हुए बारिश बाधित मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: रायपुर में कल टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी कोलकाता ने 48 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 19, वहीं फिन एलन ने 18 रन बनाए। अंगकृष्ण ने रिंकू सिंह के साथ 4वें विकेट के लिए 76 रन जुटाकर केकेआर को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रघुवंशी ने ताबड़तोड़ 71, वहीं रिंकू सिंह ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। कोलकाता ने 4 विकेट पर 192 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत करते हुए महज 20 पर 37 रन जुटाए। इसके बाद कोहली ने देवदत्त पडिक्कल

0: दल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और केवल 58 गेंद में अपना शतक पूरा किया। कोहली ने 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन की नाबाद पारी खेली। बेंगलुरु ने 5 गेंद शेष रहते 193 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेट का ये खेल व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है।
1: Heart and soul out there on the field, whether I'm fielding or batting, because it's gonna finish one day, and I want to make the most of every day that I'm on the field and just enjoy myself and have a lot of fun and look forward to pressured situation, look forward to scenarios where I'm feeling a bit of heat, and then I challenge myself to say, you know what, just go for it. And when you cross the line, it makes you a better player. So you build your character slowly and surely when you keep performing under pressure. And for me, even after all these years, and it's still the love for the game. I just love hitting the ball in the middle of the bat, and that joy is still there, and it's all God's grace, and I'm very thankful and grateful.
0: के दौरान विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने का कारनामा भी अपने नाम कर लिया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: 14,000 से ज्यादा रन, 9 आईपीएल सेंचुरीज और लगातार 2008 से जो खिलाड़ी खेलता आ रहा है आज तक वैसा ही परफॉर्मेंस करता है। जब ट्रॉफी नहीं थी तब भी इनका प्रदर्शन ऐसा ही था, आज ट्रॉफी है, डिफेंडिंग चैंपियन है तब भी वैसा ही प्रदर्शन, कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं थ्रू आउट अपने करियर में।
3: सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं हो, इतना शब्द यूज किया कैरेक्टर
2: जी,
3: यहाँ विराट कोहली का कैरेक्टर का परिचय है। जो हम जो इनिंग्स जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जो हम नहीं बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि विराट कोहली 60 बॉल्स में सेंचुरी बनाया, 11 चौका मारा, 3 छक्का मारा, हमने ये नहीं बोलता कि वो 8 डबल लिया
2: जी।
3: इनिंग्स को कैसे पेस किया
2: जी।
3: जो वो बहुत जरूरी है कि किसी को पकड़ के, एक ओपनिंग बैट्समैन को पकड़ के इनिंग्स को लेके जाए और बढ़ाया जाए। सिर्फ चौका छक्का तो हमको दिखता है, जो सिंगल्स और डबल्स में खेलता है वही खास बड़े प्लेयर के, जैसे कोहली जैसा प्लेयर को, पेडिग्री वाला जो प्लेयर का, इससे का नमूना है। और यही विराट कोहली दिखाया, खास करके लास्ट 2 मैचेस में आपको याद होगा 0-0 में आउट हुए थे, उसके बाद यही कैरेक्टर का परिचय है।
2: इसी श्रृंखला में एक नया नाम हमें अब जुड़ता दिख रहा है, वैभव सूर्यवंशी का, जिनका सिलेक्शन इंडिया के लिए जो श्रीलंका में होना है, जिसकी मेजबानी अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत कर, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ इंडिया की टीम में। और जिस तरह का प्रदर्शन वो लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो एशिया कप हो, अंडर 19 विश्व कप हो, अंडर 17 हो, लगातार आईपीएल में भी डोमिनेट करके खेल रहे हैं वैभव।
3: एकदम राइट सिलेक्शन है, और दिस इज द टाइम कि उसको ब्रेक दिया जाए। जितना भी ब्रेक मिलेगा, जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, खास करके 2 टीम के साथ जो खेलेंगे, श्रीलंका और अफगानिस्तान, और स्पिनिंग ट्रैक में अगर ये प्रदर्शन रन बना सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपको देखिएगा इसका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और क्या जितना बोले उतने ही कमी है, मगर फ्यूचर तो उनका बहुत ही ब्राइट है।
2: तो क्या हम कहें कि आयरलैंड और इंग्लैंड में जो होना है अभी श्रृंखला, उसके लिए वैभव तैयार है टीम में सेलेक्ट होने के लिए?
3: देखिए तैयार तो है, जब तक ना आप उसको एक्सपोज करिएगा वेरियस पिच और वेदर कंडीशंस में, तब तक आपको उसका एग्जैक्ट परिचय नहीं मिलेगा। मगर व्हाइट बॉल क्रिकेट एक चीज है, रेड बॉल क्रिकेट है। टोटल आप, हमने कुछ क्षण पहले ही हमने विराट कोहली का बात किया है, कैरेक्टर तो वहीं से पता चलेगा।
2: और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि पंजाब ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बना लिए। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। सौमित्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
2: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
5: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
4: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
6: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
4: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
7: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
4: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाए। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसर

0: कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that peace and security

0: countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेट। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाला है केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने

0: यूज की है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और ये आई बेस ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है, और उसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं, और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा, और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप में तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाया गया है। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी भी हमारे पास आ रहे हैं। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, VAWS डेटा भी यूज किया है। यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं। जो वहाँ पे AWS डेटा, ERG डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNCA जो यील्ड फोरकास्ट करता है उनके लिए, उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शेष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इंपैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर जो है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व्ड है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसमिनेट करते हैं, और डिसमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव के जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल के फिर उसका गाँव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया किया था, कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है। फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट, इनकेस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या

0: एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजरी के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेज, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखनी चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाते हैं मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्रीवाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गुरुशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्रीवाइड।

0: see the baseline value, say for anemia, if the prevalence is around 55 to 60%, deficiency prevalence is that will be taken into account to see how many people have to be enrolled, and this will change, this will differ for every nutrient of interest.
1: Dr. Feroz, just coming back to ICAR, the Indian Council of Agricultural Research, who are actually producing these biofortified crops. So how is it that you are ensuring that diet and lifestyle diseases are reduced? What's the role of sugar? Are you looking to reduce its impact? How are you going about doing it at your level?
2: Yeah, basically, as Dr. Priyanka has mentioned, now we have low GI rice. So very recently, now we have developed low GI maize as well. So low GI essentially means it takes more time for digestion in the human gut. So the availability of the sugar to the blood will be slowly done rather than rapidly enhancing the level of sugars. So we have several breeding methods to develop high-yielding low GI rice or low GI maize, or for that matter, low GI other crops as well. So we have definitely some genes which are known for that. And so we'll try to transfer those genes from the donor to our required varieties. And therefore, we will reduce, or rather, I would say, we'll increase the resistant starch part of it so that the GI or the glycemic index is reduced as compared to the higher ones, which is available in current varieties.
1: Well, taking a cue from what the Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said, food being the medicine with the right approach. It's time for us to thank both our experts, Dr. Priyanka Bansal with ICMR and Dr. Feroz Hussain with IARI for giving us such an in-depth understanding of the Sehat Mission, where strengthening of public health is through prevention and awareness, launched in this joint initiative by ICMR and ICAR. Thank you.
0: Thank you.
2: Thank you.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Insights.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
5: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबुधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव

सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुआवजे की स्थिति की जानकारी हर 3 घंटे में देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समर्ग दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल, कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था निर्मित करना। प्रधानमंत्री मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोग को मजबूत करने के लिए सदस्य देशों की उपस्थिति और निरंतर प्रतिबद्धता के प्रति आभार प्रकट किया।

0: प्रजयशंकर ने कहा कि कई देश ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स के लिए मानवता को प्राथमिकता देने और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जन संबंधों पर आधारित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरों मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच मतभेदों की तुलना में साझा हित अधिक है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का आह्वान किया। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन संबंध पहले से कहीं बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: एक बयान में कहा गया है कि बैठक में ईरान संघर्ष और अमेरिका में बढ़ते राजनीतिक दबाव की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति 3 दिन की चीन यात्रा पर हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। श्री रूबियो ने कहा कि चीन द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान लगातार ताइवान का मुद्दा उठाता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री लावरो ने पिछले वर्ष दिसंबर में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति के बारे में श्री मोदी को जानकारी दी। रूस के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का सर्वोत्तम मार्ग बताते हुए भारत के निरंतर रुख को दोहराया। 16 देशों के बहुराष्ट्रीय दल के साथ इंडियन ओशन शिप सागर में के रूप में तैनात भारतीय नौसेना पोत INS सुनैना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री पहुंच पहल के तहत कल कोलंबो पहुंचने वाली है।

इस जहाज को 2 अप्रैल को मुंबई से रवाना किया गया था। इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों के नौसैनिकों के साथ संयुक्त बंदरगाह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में जहाज संचालन, नौवहन, अग्निशमन, क्षति नियंत्रण और समुद्री अवरोधन अभियान शामिल थे। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हुर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैरा बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के कार्यालय ने कहा है कि यमन और हौती आंदोलन 1600 से अधिक कैदियों के आदान प्रदान पर सहमत हो गए हैं। यह यमन संघर्ष से शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी कैदी रिहाई है। हौती 580 कैदियों को रिहा करेगा। इसमें 7 सऊदी और 20 सूडानी नागरिक शामिल हैं। उधर गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजित नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजित ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल, कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था निर्मित करना। प्रधानमंत्री मोदी की कल अबूधाबी की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। हुर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश और समय हो चुका है रात के 10:31 और 10 सेकेंड्स। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम हर सिंगार का, तो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में कई खूबसूरत चीजें बिना किसी पूर्व तैयारी के हो जाती हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो वही अनजाने रिश्ते, वही अनजाने पल हमारी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे ही एहसास से भरा आज के प्रोग्राम का पहला गीत।

विपिन सचदेवा की आवाज में फिल्म सनम बेवफा से ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत था महेश किशोर का और बोल थे सावन कुमार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सिलसिला से एक बेहद ही खूबसूरत नगमा। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत

दोस्तों, हर रिश्ते को दुनिया के सामने साबित करना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते इतने सच्चे होते हैं कि उन्हें सिर्फ एहसासों की जरूरत होती है। जब दो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तो उनकी खामोशी भी बातचीत बन जाती है और उनकी दूरी भी नजदीकी में बदल जाती है। प्यार अगर सच्चा हो तो वो चुपके चुपके ही सही, पर जिंदगी को खूबसूरत बना देता है।

0: फिल्म परदेश से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का और बोल आनंद बख्शी के। श्रोताओं, अगला गीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम हरसिंगार आप सुन रहे हैं अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए अगला खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म धर्मात्मा से, आवाजें मुकेश और कंचन की, बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, जब कोई हमें समझता है, हमारी भावनाओं को स्वीकार करता है, तो हमारे भीतर छुपी प्रतिभा और अच्छाई और भी निखर जाती है। तो दोस्तों, अपने रिश्तों को शब्दों से नहीं बल्कि सच्ची भावना और विश्वास से सजाइए, क्योंकि जब दिल से जुड़ाव होता है तो हर दिन एक नई शायरी बन जाता है।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम हर सिंगार यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 11:10 पे कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के

0: बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति चिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security, and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25, achieving the target set under the 2022 Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA 5 years ahead of schedule. The Election Commission today

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश। समय हो चुका है रात के 11:11 और 6 सेकंड्स। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत का। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्यार जीवन की वो सुंदर भावना है जो हमें संवेदनशील बनाती है, जिम्मेदार बनाती है और दूसरों को खुशी में अपनी खुशी ढूंढना भी सिखाती है। जब दिल में सम्मान और विश्वास हो तो हर रिश्ता जिंदगी को रोशन कर देता है, लेकिन कोई रिश्ता कब प्यार में बदल जाता पता ही नहीं चलता।

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, संगीत जतिन ललित का और बोल आनंद बख्शी के। दोस्तों अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजार से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत खयाम का और बोल मीर तकी मीर के।

दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें कितना भी सुन लो लेकिन दिल नहीं भरता। हमारे भारतीय संगीत में न जाने कितनी ही ऐसी सुरीली आवाजें हुई हैं जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है।

फिल्म किनारा से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए दोस्तों अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जहरीला इंसान से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, जब हमें किसी का वर्षों से इंतजार हो, ऐसे में वो हमराही, वो हमसफर जब हमारे सामने आ जाए तो हमारे पांव अक्सर जमीन पर नहीं पड़ते। हमारा मन झूम उठता है और मन के साथ साथ हमारे पांव भी थिरकने लगते हैं। अगला गाना भी कुछ ऐसा ही अनुभव कराने वाला है।

फिल्म घर से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, संगीत आर डी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

दोस्तों, मोहब्बत भरी मुलाकात हमेशा खास होती है, क्योंकि उसमें बनावट नहीं होती, बस मासूमियत होती है। जब आप किसी को पहली बार प्यार भरी नजरों से देखते हैं और बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हैं, तो समझ लीजिए दिल ने अपनी कहानी शुरू कर दी। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो धीरे धीरे नहीं, बल्कि कभी कभी तो एक ही नजर में हो जाता है। तो अगर आपको भी याद है वो पहली मोहब्बत भरी मुलाकात, वो पहली मोहब्बत भरी मुस्कान, तो ये गीत आज आपके लिए है।

0: फिल्म साजन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के। श्रोताओं, अगला खूबसूरत गीत बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म हस्ते जख्म से, आवाज मोहम्मद रफी और बलबीर की, संगीत मदन मोहन का और बोल कैफी आजमी के।

ही पड़ा, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है ज्वेल थिफ, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। पूरे खाली घर में नितांत बैठी मैं और बाहर से आती ये बारिश की बूंदों की टिप टिप की ध्वनि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है, जैसे किसी ने कोई मधुर संगीत छेड़ दिया हो और मैं मंत्रमुग्ध होकर इसकी ओर खींची चली जा रही हूं। घर में जब पेड़ पौधों को देखती हूं सभी खुशी से झूम उठते हैं और वर्षा के स्पर्श मात्र से मुझे भी ये बारिश उतना ही सुकून देती है, मेरे तपते मन को थोड़ी सी शीतलता और आंखों से बहते आंसुओं को छुपाना सहज हो जाता है और मैं घंटों बिता देती

बारिश में भीगते हुए। ये मेरा सबसे पसंदीदा मौसम जो ठहरा। अगला गीत फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में, आवाज मुकेश की। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत, आवाज है लता मंगेशकर की।

कितनी खूबसूरत बात है कि पुराने पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हवाएं तेज हैं, बल्कि इसलिए कि पुराने के जाने का समय आ गया है। अब नई कोपलों का आगमन हो चुका है, छोटे पत्ते धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और इस तरह वीरान हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है, ठीक हमारी जिंदगी की तरह। यहां भी पतझड़ आता है जो खाली कर जाता है किसी अपने की जगह, लेकिन वो छोटी कोपलें जल्दी ही भर देती हैं उस जगह को अपने रंग बिरंगी छटा से। वीरान कुछ नहीं रहता, बस दुनिया में आना जाना जारी रहता है, और यही नियम प्रकृति का सबसे खूबसूरत नियम है।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत, फिल्म का नाम है बावर्ची और आवाज है मन्ना डे की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में पहला गीत, फिल्म का नाम है गीत और आवाज है मोहम्मद रफी की।

अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से, अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया। मन की खिड़की थी आंखें, जो कुछ भी छुपा था मन में वो सब आंखों में दिखा। जो कुछ भी छुपा था मन में वो सब आंखों में दिखा। अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया, और मन खाली हो गया। अगला गीत, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, आवाज है कुमार शानू की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म देव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज है लता मंगेशकर की।

यही सोचकर चुरा लिया था, यही सोचकर चुरा लिया था एक रुमाल उसका मैंने, यही सोचकर चुरा लिया था एक रुमाल उसका मैंने। मोहब्बतें कहाँ मुकम्मल होती हैं, मोहब्बतें कहाँ मुकम्मल होती हैं, उसको तो बिछड़ ही जाना था। रखती हूँ कैद में छुपा हवाओं से उसकी खुशबू को, इसी के सहारे बाकी उम्र जो बिताना था, इसी के सहारे बाकी उम्र जो बिताना था। अगला गीत, फिल्म का नाम है मेरे सनम और आवाज है मोहम्मद रफी की।

यूं कस के हाथ थामे रहना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं, यूं कस के हाथ थामे रहना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं, खुद ही पूछ लेना हाल मेरा कि तुमसे छुपाती बहुत हूं। जानते हो ना, भीतर बहुत से समुद्र छुपाए, मैं मुस्कुराती बहुत हूं, मैं मुस्कुराती बहुत हूं, यूं कस के हाथ थामे रखना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। अगला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

अरे वक्त आ चला है कि एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। वहीं IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म का नाम है कामचोर।

वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, दिल के भीतर ही मगर एक राजदार रह गया। वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, दिल के भीतर ही मगर एक राजदार रह गया। हमने चाहा था कहें सब कुछ सलीके से मगर, हमने चाहा था कहें सब कुछ सलीके से मगर, होंठ चुप थे आंख में बस एक संसार रह गया, आंख में बस एक संसार रह गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की

साथ आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गीत, आवाज है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया, रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया, चांद ढलता ही रहा, सूना सा आंगनदार रह गया। तुम गए तो यूं लगा जैसे समय थमसा गया, तुम गए तो यूं लगा जैसे समय थमसा गया, घड़ी चलती ही रही पर दिल हिलाचार रह गया, घड़ी चलती रही पर दिल हिलाचार रह गया, रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बाबू, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते फिर मिलने के वादे के साथ और एक खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिल्म का नाम है हम जोली, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद सुरभि होंगी आपके साथ। मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिक विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, BRICS has emerged as an important platform.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस जिंदगी में कुछ रिश्ते शोर से नहीं, आवाजों से नहीं, बल्कि एहसास की एक प्यारी डोर से बंध जाते हैं। और जब ये दिल जुड़ जाते हैं तो हर धड़कन एक कहानी कहने लगती है। तो चलिए, इसी बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ हम और आप सुनते हैं ये सदाबहार नगमा। फिल्म है धरती कहे पुकार के, लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज में सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम है हमराही और सुरभि है आपके साथ।

दोस्तों, ठंडी हवाओं का अपना एक अलग ही जादू होता है, एक अलग ही मिठास होती है। लेकिन कई बार जब करीबी व्यक्ति, वो इंसान जिससे दिल लग गया हो, वो दूर रहे और कुछ पुरानी यादें दिल में कसक बनकर उभर आएं, तब कुछ मीठे एहसास, या ये कहा जाए कि दिल का दर्द उभर कर दिल के करीब आ जाता है। तो चलिए, सुहाने से मौसम में सुनते हैं हम और आप मिलकर ये गीत।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

हमराही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको। मैं दुश्मनों के बहुत ही करीब रहता हूँ, समझ के सोच के यारों में ढूंढना मुझको। खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, नजर नवाज नजारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको। और दोस्तों, रात की महफिल में कभी कभी जहां मोहब्बत की, इश्क की, दर्द की बात हो रही होती है, ऐसे में लोक रंग और शरारत का तड़का लगना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए सुनते हैं मधुमती फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब और साथियों की आवाज़ से सजा चुलबुला गीत आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मेरा नाजुक बदन तो शबनम के कतरों सा रंगी पसीना उमर उस

सुरभि के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं हमराही और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, कुछ गीत सिर्फ धुन नहीं होते बल्कि वो किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। कभी किसी अपने की याद जब उठती है या फिर कभी किसी बिछड़ते रिश्तों में कसक हो आती है और कभी दिल की वो खामोशी जिसे हम शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते। तो आज की इस रात एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसकी मिठास और दर्द सीधे दिल को छू जाते हैं, रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में। चलिए सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

प्यार में कभी रूठना होता है तो कभी मनाना होता है, और बस किसी अपने का साथ इस सफर को बहुत खूबसूरत बना देता है। पुराने दौर के गीतों में यही सादगी और अपनापन तो दिल को छू जाता है। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है चोरी चोरी, फिल्म का सदाबहार दिल को सुकून देने वाला गीत लता जी और मन्ना डे साहब की आवाज में।

कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि रात की खामोशी में दिल के और करीब आ जाती हैं। किसी की आवाज़, किसी की मुस्कुराहट और कुछ अधूरे पल दिल को चुपचाप छू जाते हैं। इसी मीठी कसक और यादों के एहसास के साथ चलिए चलते चलते सुनते हैं पारस मणि फिल्म का ये गीत।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा

0: के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5,00,000 घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 लोगों से अधिक की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। और खेलों में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। वहीं गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। आजाद फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अपलम चपलम। दोस्तों कभी कभी किसी की मुस्कुराहट दिल की सारी उदासी दूर कर देती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो याद आते हैं तो माहौल में एक अजीब सी एक खूबसूरत सी मीठी सी रोशनी घुल जाती है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है पारसमणि, लता मंगेशकर और कमलेश की आवाज़।

पुराने गीतों की बात ही कुछ अलग है, थोड़ी शरारत, थोड़ी मासूमियत और ढेर सारे खूबसूरत एहसास साथ में। दोस्तों, जब मुस्कुराने और जिंदगी जीने को लेकर एक अंदाज की बात की जाए तो ये गीत मस्ती भर देते हैं, आत्मविश्वास और दिलकश अदाओं से सीधे दिल में उतर जाते हैं। और ऐसे में जब बात हो एक ऐसे गीत की जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ हो और साथ में महमूद साहब की मस्ती जुड़ जाए तो ये महफिल अपने आप रंगीन हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं गुमनाम फिल्म का ये बहुत ही शानदार गीत रफ़ी साहब और महमूद की आवाज़ में।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

ताली तक जमी तक ताली तक जमी तक धलाम तक जग तक ताली के नक तक नक तक जम तक नक नक जम तक नक नक जम तक नक नक जम धरिता जग धरिता जन जाने को गुदारी दागु तारी के ताली जम धरिता जग धरिता जन जाने को गुदारी दागु तारी के जम तारी जग धारी तक नक तक तक जिंद तक जम तारी जग तारी जाने जाने को

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। कभी कभी चोट दुश्मनों से नहीं बल्कि उन अपनों से मिलती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और जब दर्द दिल से निकलकर लफ्जों में बयां होता है तो वो सीधे एहसास तक पहुंच जाता है और इसी दर्द को, इसी सच्चाई को बयां करता है आखिर क्यों फिल्म का ये बेहद भावुक गीत। जी हाँ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। चलिए सुनते हैं आखिर क्यों फिल्म का ये गीत।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। भाई पुराने गीतों की मिठास सुरों में

0: नहीं बल्कि लफ्जों में, गीत में और दिल छू लेने वाले अंदाज में बसती है। साथ ही जब रफ़ी साहब की आवाज़ हो तो कोई भी गीत हो वो एक रंग में ढल कर अपने दिल तक पहुंच ही जाता है। तो चलिए गंगा जमुना फिल्म से सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये चुलबुला गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से

इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर,

0: देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई थी। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की समय सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में कल रात पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वर यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of engagement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRIC countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं सुरभि और प्रोग्राम है भोर सुहानी। दोस्तों, नई सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती बल्कि एक नया भरोसा, नई उम्मीद और फिर से शुरुआत करने का मौका भी लेकर आती है। कल क्या हुआ ये सोचकर आज का दिन मत खोइए, क्योंकि जिंदगी हमें हर सुबह यही कहती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मुस्कुराइए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाइए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनती हैं। जी, आप सुन रहे हैं भोर सुहानी सुरभि के साथ, जहां हम हर

सुबह की ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, उगते सूरज की पहली किरण, और जब ऐसे खूबसूरत पल साथ हों तो ये दिन अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं येसुदास की आवाज में, अयास फिल्म से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

भोर सुहानी सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह है जहां कुछ लोग राहों में मिलते हैं और कुछ याद बनकर साथ चल पड़ते हैं, और ऐसे में कई बार वो हमारे साथी भी बन जाते हैं और कई